अभी आप सुन रहे थे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये वन ऑफ माय पापा's फेवरेट सॉन्ग थे और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। फ्रॉम द मूवी विश्वास से हमने पेश किए हैं, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, प्रोफेसर है फिल्म का नाम और गीत का बोल है ए गुलबदन। ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है, तो शर्ली ये स्पेशली आपके लिए है।

प्रोफेसर है फिल्म का नाम और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे ए गुलबदन। और ये सॉन्ग हमने पेश किया है स्पेशली शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। दमाईती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार, ऐसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर, आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी तकदीर से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कैसे कोई जाने भला फ्रॉम द मूवी तकदीर से द टाइटल अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हेमंत कुमार जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी प्यासा से हम पेश करते हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।

0: जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्यासा से हमने पेश किए हैं हेमंत कुमार जी की आवाज में। अचम के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5

अभी आप सुन रहे थे आ जाऊं कि तुझे मैं लेके चलूं। किशोरदा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दूर गगन की छाव में। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, फ्रॉम द मूवी जोशीला से हमने पेश किए हैं, किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अमर प्रेम है फिल्म का नाम। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

अभी आप सुन रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किशोर डा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं,

अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने।

ए तीर चल गए, अभी आप सुन रहे थे तुमसे अच्छा कौन है, है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन की किसी में नहीं नहीं, फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है। इसी फिल्म से हमने पेश की है लता और मोहम्मद रफी जी मिलकर आपको सुनाने वाले थे। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, जब मोहब्बत जवान होती है।

अभी आप सुन रहे थे जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जुबान होती है। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी, बेटे से

उठो ना रूठो मेरी जा, मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से अभी हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। धड़कन है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैं तो चला जिधर चले रास्ता।

मैं तो चला जिधर चले रास्ता भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जगह है। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी परवाना से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना, से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से में एक सपना सा जागा है। लहरा के आया है झोंका बहार का, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी वारिस से आप सुनेंगे।

फ्रॉम द मूवी वारिस से हमने पेश किया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में लहरा के आया है झोंका बहार का। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है आशा भोसले और किशोर डा की आवाज़ में आप सुनेंगे दूरियां नज़दीकियां बन गई अजब इश्तफाक है।

दूरियां नजदीकियां बन गई जब इस्तीफा है, आशा भोसले के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले ज़रा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़माने वाले हमें इतना गरीब समझते हैं, ज़माने वाले हमें इतना गरीब क्यों समझते हैं, उनको मालूम नहीं कि हम दर्द की दौलत से मालामाल हैं।

अभी आप सुन रहे थे जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हम पेश करते हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा, और ये गीत हम पेश करके हैं खास करके दो व्यक्ति के वास्ते, यानि विद्या जी और संता जी के वास्ते, जबकि ये दोनों प्रोग्राम मिलकर सुन रहे हैं। तो चलिए ये गीत हो जाए उन दोनों के नाम।

मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हमने पेश किए हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा, और ये गीत हमने पेश किए हैं विद्या जी और शांता जी के वास्ते जबकि ये दोनों प्रोग्राम सुनते हैं। दिल बेकरार सा है

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दिल बेकरार सा है। मोहम्मद रफ़ी प्रोग्राम में फिर से आ रहे हैं सुनने वालों, जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो।

अभी आप सुन रहे थे जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, गुमराह है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किए हैं।
1: मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, आपको आज वो बात बतलाने जा रहा हूं जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। मित्रों, इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस प्रकार मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, बार बार मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। आप भी, मैं भी, सभी लोग मित्रों, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मित्रों, आज में जी ले।

मित्रों, कल घर को जाना है, मतलब सभी लोग दुनिया छोड़कर एक दिन जाएंगे, यानी हम सभी मरेंगे एक दिन। कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं। गरीब, धनवान, ताकतवर, दुर्बल, सभी जाएंगे। तुम भी, हम भी। मित्रों, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुराई कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो जो दुख सुख आपको मिलता है ये किसी के कारण नहीं है। कभी कभी हम उंगलियां दिखाते हैं उनके कारण, वो कार्रवाई से ठीक है, मगर आपका कर्म के अनुसार सब कुछ यहाँ मिले है। तुम्हारे करतूतों के कारण दुख सुख प्राप्त हुए है। मित्रों, और जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच, ध्यान करना, सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में आपको खोज लेगा, आपको खोज लेगा। ऐसुकुयू भगवान कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हैं, ये भगवान बोलत है। मित्रों, श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, उनकी शक्ति कण कण में निवास करते हैं। भाई बहनों, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट अनुभव कराता है। जैसे आपको दुख किसी ने दिया, मारपीट कर दी, तो आप रोते हैं, भगवान हमके मार दे। आप कहते हैं, देखिए भगवान तो के का करी, उसे लुकू सहंगा दो दू नंगाई। तो ऐसे मुर्गियाँ भी, ऐसे बकरिया भी, सभी लोग को पीड़ा होती है। मित्रों, इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना, किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है। किसको? ईश्वर को कष्ट देने के समान है। तो सबसे मिल कर रहो, और ना सिर्फ बोलते रहो हम तो सबसे मिल के रहीला, हाँ हम किसी के ना देख के जरीला। तरवेल यूना एस्तमंग दो सबके देख के जरे है, अनभली मनावत है, पसो है खबरदार। मित्रों, दीपक का जीवन इसीलिए, सुनिए, दीपक का जीवन, दीपक मतलब दिवाली, इसीलिए वंदनीय

रहो जैसे जी है, चलते रहो। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है मित्रों जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले, कुछ भी ना मिले फिर भी भगवान को धन्यवाद देते रहना। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपके विचार होंगे दोस्तों, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीचे आओगे, नीचे आओगे यो फादों, और अच्छे विचार रखोगे अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे मित्रों, ऊंचाई पर जाओगे। हाँ।

0: मित्रों, विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। क्या बना रहे? खोने का डर। मित्रों और भगवान कहते हैं, चार वेदों का अर्थ नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, अनात्रो भी, मगर मित्रों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी इन चार शब्दों का मर्म यानी मतलब जान ले तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा मित्रों। मगर हम तो कोशिश नहीं करते हैं जीवन के मतलब समझने के लिए, सोचते हैं खाओ पियो मस्त रहो, मिलीप श्वीति, पैसा है, सब कुछ है, ये बात नहीं है दोस्त। बात ऐसे नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, जैसे आप और हम करते हैं। अरे बप्पा मर जाइए तो का करो, मैया रे मैया है। तो जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। फर्क सिर्फ यही होता है मित्रों कि हम जान नहीं पाए हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे, कहाँ रहली हम पिछले जन्म में, यही तोरिया हम लोग ना जान पाएला, तभी तो दुख होवे है मित्रों। मगर भगवान फिर भी कहते हैं ना कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छाई तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है मित्रों। मगर हम सोचते हैं कि भगवान तो हमके ना सोचत है, भगवान दूर हो गए हमसे। ऐसी बात नहीं है मित्रों, ये बात नहीं है।
1: मित्रों, इस भजन को सुनकर आप अपने जीवन को शायद

मित्रों, कब मुलाकात आखिरी हो जाए, इस भजन को जरूर सुनिए। आप पूरे भजन को सुनना। धरती पर दोस्तों, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ऊंचा नीचा, जाति पार्टी, सब अपने कर्मों से बनता है मित्रों। कुछ पाना है, ध्यान करना, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर नहीं, अपने पर भरोसा कीजिए और परमात्मा पर, क्योंकि सहारा कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं दोस्तों। और धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र, गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, ये मायने रखता है। ये मतलब की बात है मित्रों, ये मतलब की बात है। और आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ध्यान करना कि आप क्या है, बल्कि ये इससे तय होता है कि आप मित्रों, कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता

मित्रों, इस गीत में हमने बतलाया है कि ना जाने कब आखिरी रात, कब आखिरी बात, कब आखिरी मुलाकात इत्यादि इत्यादि हो जाए। मतलब है कि जब दिन भर आप अपने पति पत्नी से, पति पत्नी से, बाल बच्चे किसी से भी झगड़ा करते हो, खूब झगड़ा किया, मस्त धड़ाधड़, रात को सोने जाओ तो बोल दो कि देखो खूब झगड़ा किया है हम लोगों ने, मगर आप सोने जा रहे हो, आराम से सोएंगे, आ राम राम आ, तो आराम से सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब झगड़ा खत्म, कल सुबह जब जागेंगे फिर से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, मगर रात्रि को सोने से पहले हमेशा झगड़ा को सलाह कर लिया करो, क्योंकि ना जाने उस रात आखिरी रात, उस रात आखिरी बात, उस रात आखिरी मुलाकात हो गई और एगो टपक गए सवेरे और झगड़ा से गई ले सूते, दन हैप्पी एंड खरू, तो प्रॉब्लम बहुत बड़का प्रॉब्लम आपको मित्रों। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी मित्रों, खुशी जरूर मिलेगी। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, ध्यान करना, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छे चीजें आपके जीवन में वापस आती है, हाँ वापस आती है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये निश्चित बात है, ये प्रकृति के नियम है मित्रों, यही प्रकृति का नियम है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति मित्रों, यही सच्ची संपत्ति है। हाँ, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने की, ध्यान करना, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने ये वाला द्वार है। मांगो नरक में जाए तो रोज झगड़ा करो ना, क्रोध करते रहो, दशीफायक हुआ बोलो मित्रों, क्रोध करने से, ध्यान करना, क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। कई बार आप अपने ही नुकसान कर बैठते हो और सोचते हो कि हम का कर बैठली है, तो हम दूसरों को दोष देते हैं मित्रों। दूसरों को दोष देने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, व्हाट हा एग्जैक्ट, क्यों कहे के हम ऐसे बाटी, काने के नित खवून से जैसे नॉर्मल रहल जाए प्यार प्रेम से, क्योंकि कल हम भी आप भी तो मरेंगे, तो वारों दी प्रॉब्लम हम ना समझ पाए हैं कि प्रॉब्लम हुआ काहे के मित्रों, काहे के है।

मित्रों, ये संसार हार जीत का खेल है। इसे नाटक समझकर सही रूप से खेलो।

मित्रों, भगवान कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। आप बचते हो क्यों? आप धड़ाधड़ क्रोध करते हो मित्रों, कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, कोशिश करें, मुइती करें, और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है। कोई आपको कुछ बोले, चुप रहो, वो खुद समझ जाएगा कि वो बेकार को बक रहे हैं। तो चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। माफ करना और ना बोलना कि हम ना माफ करा, मीने हो फरकीफिंग, तब मरो लेके अगले जन्म में कहाँ जइयो, का करियो पता ना है, भगवान जाने। तो माफ कर दो, का हो जाए तुम्हारा, कुछ थोड़ा लाश हो जाएगा, आप जीत जाओगे। तुम में कामियां भले ही हजारों हों, गलतियां भले ही हजारों हों आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो मित्रों, खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर यानी अच्छा रखते हो। जितना सुनिए, जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रों, जब भगवान आपको कुछ देना चाहता है ना, तो पहले इधर उधर सब बिखेर देंगे, पिसलवा इधर उधर फेंक देगा, कोई देखेगे तुम्हें वो सब उरी है तुम्हें वो क्या कहते हैं, खदेलत है। जब आप घबराओगे नहीं, अच्छाई से रहोगे, प्रेम से, तब धीरे धीरे भगवान आपको सब देने लगेंगे। तो आप सोचेंगे हैं ये कैसे, हम तो इसे ना मंगले, हम तो ये कमोना कर्म फिर भी हमके मिला था। सब भगवान की खेल है मित्रों। कोई समझ पाया है कि आप ही समझोगे, हैं? नहीं समझ पाओगे मित्रों। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है मित्रों, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और ना जैसे आप हैं, अच्छा आप नहीं, आपके बगल वाले होंगे तो छोड़ो, आप नहीं तो आप सत्य की राह पर चलते हैं मित्रों। तो मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका भाग्य आपके हाथों में है मित्रों। गोरे में कहे गए हैं कि द रेहिसर फाइ तुकोम्स ऑफ यू फॉन्ग द लीफ दैट बेन यव, और ना कोई और। सत्य से मित्रों ध्यान करना, हम का बोलत हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आप तो जानते हैं, आप तो करते हैं ना छल कपट वगैरह, चोरी चपाटी, फ्रॉड, लूटमार, नहीं तो आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको आपका कमाया हुआ धन सुख देंगे। और जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते मित्रों, तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। तो आप क्यों सिद्धांत को बदलेंगे? रास्ता बदल लो, दूसरा तरीका से दूसरा काम ढूंढ लो, हैं? उसमें क्या बात है मित्रों? तो गलत काम मत करिए। नगो दूल्हा सानी अंदर से हैप्पी हम प्रॉब्लम।

मित्रों, जब आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम अपन जीवन आपके हाथ में सौंप दे ली, तो उस वादा को पूरा करना भी चाहिए, और ना बाद में दूसरों को गाली देने लगो, अपने खुद करने लगो। तो भगवान की का है बोले कि भगवान तू हमारे लिए सब कर, खबरदार लिलाओ लाओ चीज ना बोला करो। मित्रों, किसी के संगत से आप ध्यान करना हम क्या बोलते हैं, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। मित्रों, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। और एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप नहीं, हम काहे ओकरे वाला ली, हम काहे उसे सब कुछ सीखी। एक मैन बेहतर दान हैम ऑफ दनहार, यू लाओ खोपड़ी ठीक ना है तो अच्छा चीज देखो तो उससे सीख लो, सीखो। उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं करो, नहीं तू ही बर्बाद होंगे। क्या होंगे? बर्बाद होंगे। देखो ना आज तक कहां पहुंच लो है? आपका बात नहीं, आपका बात हम ना बोलत हैं। अभी नाराज हुई है कि परदेशी बाबा हमके का बोलत है, वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो क्या हम बोलत है। मित्रों, और संबंध बड़ी बातें सुनिए, संबंध बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अपने भौजी देवरनिया या कोई भी रिश्तेदारी को बड़का बात ना सुनाओ, तू धनवान है तुमको बड़का बात बिहान गिर जाइयो है, रावण भी गिर गए ना, तो तू बचियो। आपका बात नहीं बोलत है, क्षमा आपके नहीं किसी और के बात बोलत है। मित्रों, और यदि सब कुछ खो कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, ध्यान करना, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा धन है। मित्रों, कर्म करते रहो, करते रहो, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, और ना ही कुछ और, जैसे लोग बतलाते रहते हैं, कहानी का लोग आप लोग को सिखाते रहते हैं। मित्रों, खबरदार इन सब चीजों से बच के रहना, बच के रहना है।

मित्रों, हम अनेक तरह की भजन गाते हैं, समझाने के लिए वो खुद भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। आप और मैं कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, जिससे हमारा अगला जन्म या भविष्य बनेंगे, और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कोई जरूर कर्म करो, अच्छा कर्म करते रहो, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना जो कर्म करते हैं उसका परिणाम ना सोचो कि का मिली का ना मिली, वो छोड़ दो। उसके किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहो। कौन फल मिले या ना मिले, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिली है। एगो पुराना कहावत, जो बोएंगे वही काटेंगे आप ना। आम के पेड़ बोइयो तो कहाँ रोज के फूल मिले हैं, समझ लेना मित्रों। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं भगवान कि अपने कर्म हमेशा समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो मित्रों, और बाकी फल के चिंता मत करो। और उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, भगवान बोलत हैं कि हमको समर्पित कर दो सब जो करत बाटे आप। इस मार्ग को अपना कर मित्रों तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, भगवान बोलत हैं, हम नहीं बोलत हैं। तो अच्छा काम करो फिर भगवान के प्राप्त करो, और बुरा काम करो तो फिर राक्षस बनो ना, मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। भगवान बोले अच्छा कर्म करने से तुम मेरे प्रेम के भागीदार बनोगे, और का चाहिए आपको है, इससे अच्छा चीज ना और कौन सी मिलेगा आपको। मित्रों, हम तो कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप भी कोशिश करिए, भगवान जाने आगे का होगा। मित्रों, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है मित्रों, कल वो किसी और का था, ध्यान करना, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे, कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। अनुदे भगवान सबसे बड़ा मित्र है। खुशी आजादी पर निर्भर होती है मित्रों, आजादी, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं, कितने मेहनती हैं, कितना मेहनत करे बाटे तू।

मित्रों, इस भजन के द्वारा मैंने आपसे बताया कि उमरिया बीती जाए, उमरिया चलत है, घड़ियां टिक टिक टिक टिक चलत है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पता है कि आगे में एको बड़का होल है जो इंतजार कर रहे थे, वही में गिरेंगे। जितना खेत कमाई है सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ एक ही छोटी सी जगह दुई मीटर लंबा हो या ताकत ब्रेथ है और गहराई है, या तुम्हें आग में झोंक देंगे, बारबेक्यू कर देंगे, बस खलास। तो मित्रों, ये जो हमने आपसे बतलाए हैं इसे कुछ सीख लो, सीखो, हम भी सीखते हैं। हम बोलते हैं, फिर भी हम सुनते हैं क्या बोलत बाटी, बाद में हम सुनत बाटी भी क्यों, बोलते समय में ध्यान न रहे कि क्या बोली, खोपड़ी में आवे बोल देवत हैं तो बाद में सुनत हैं, तो हम भी जीवन में उतारने की कोशिश करत हैं। तो मित्रों, आप भी जरूर कीजिए ना, जीवन में उतारिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवाते रहना जो आपसे मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, तो हम आपसे मिल करके बहुत खुश हैं। भगवान आपका कल्याण करे, खुशी से रहो, बुराई छल कपट किसी से ना करो, चोरी चपाटी ना करो, आपके सामने आएगा। मित्र, प्रेम से रहो, विश्वास के साथ रहो, भगवान पे भरोसा करो, कल्याण हो, कल्याण हो।

मित्रों, मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। और ये मन ही है मित्रों, ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता हुआ रहता है। अगर जीवन का सफल बनाना है मित्रों, तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन पर काबू करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये मत भूलिए।

मित्रों, मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। मित्रों, इस पर विश्वास कीजिए। और गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वही मन में पैदा होने वाली विकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, बड़ी दूर रहता है। मित्रों, साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों,

0: मित्रों, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा वो। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग, मित्रों, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब पता नहीं है कि आप बुद्धिमान हो या कैसे हो, मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप बुद्धिमान हो। मित्रों, जो हम आपसे बातें बतलाते हैं, आप इसे हल्का में ना लीजिए, हवा में नहीं लीजिए, जीवन में उतारने की कोशिश करना, तभी आपके बाकी जीवन जो है, तभी उसका और आनंद उठा पाओगे। अन्यथा वही घिसते रह जाएंगे हम। भले ही धन दौलत सब कुछ है, मगर पूछिए अपने आप से कि आपके अंदर में वो खुशी है, हौसला है, कि कुछ खामियां महसूस कर रहे हो आप, कि कुछ कमती है अभी, तो यही है कमती। ज्ञान के सागर में से जितना पानी ले पाओ, जितना ज्ञान ले पाओ, लीजिए, वो सब आपके काम में आएंगे। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: भाई बहनों, स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों को कसूरवार मत ठहराओ, क्योंकि स्वयं के पास सत्य को प्रकट करने का अपना ही तरीका है।

दोस्तों, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। बहादुरी से भरा हुआ है मित्रों, कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। ध्यान करना हम क्या बतला रही है, सार्वजनिक बात है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मित्रों, तभी वे हमला कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए, बहुत बच के रहना चाहिए दोस्तों।

दोस्तों, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता। फिर से बोल रहा हूं, आप इसे हमेशा याद रखना, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता। अपने विचार को पवित्र बनाओ मित्रों, क्योंकि व्यक्ति अपने विचार से ही अनंत काल तक जीवित रहता है, अनंत काल तक जीवित रहता है मित्रों।

साथियों, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हाँ, इतना मजबूत बनो, स्ट्रांग हो जाओ मित्रों। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करो, युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। आपको है एक ऐसा मित्र, एक दोस्त कि सब खब्बू है, आए खाए पिए मस्ती में रहते हैं और प्रॉब्लम भाई तो भागे हैं जैसे हरणा। नहीं, ऐसे इस तरह का दोस्त आपको नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं मित्र। आपका मित्र तो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, ये तो पता है मुझे। और ध्यान रखना इसको भी दोस्तों। प्रार्थना ऐसे करें जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और काम ऐसे करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर है। खुद को प्रभावित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें और दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने दिल का उपयोग करें।

मुकेश जी ने हमके सुना दी कि तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाई जाग के। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते, और भरोसा एक रिश्ते की सबसे महंगी शर्त है। भरोसा, जी हाँ, भरोसा एक रिश्ता की सबसे महंगी शर्त है।

ये दुनिया नहीं जागीर, किसी के सुंदर सा गीत रफ़ी जी की आवाज़ में हमने सुने। सुने वालों, खूबसूरत है वो हाथ, खूबसूरत है वो हाथ जो किसी के लिए मुसीबत मुश्किल वक्त का सहारा बन जाए।

रोना चाहे रो ना पाए उदित नारायण जी की आवाज़ में हमने सुने, फिल्म का नाम अनारी है। सुनने वालों, जिंदगी में ज़्यादा टेंशन है, तनाव है, दबाव है, चिंताएं हैं और हमसे नहीं संभल रहा है, ये सब हमसे संभल नहीं रहा है, तो ये सब उनको दो ना। ये सब टेंशन, तनाव, दबाव जो है ये सब उनको दो ना, जो जिसने हमें ज़िंदगी दी है वो जब पूरी दुनिया संभाल रहा है तो ये भी संभाल लेगा।

जी हाँ, ये मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में हमने यहाँ से श्रवण की है। सुनने वालों कि कल चमन था आज एक सहरा हुआ, फिल्म वक्त से निकल गया ये सुंदर सा गीत। जिंदगी पल पल बदलती है, ये तो सही है कि जिंदगी पल पल बदलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिलती है।

0: आज वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै फेराज।
1: जी हाँ, वक्त से दिन और रात, फिल्म वक्त से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। हम क्या कहें, हम तो बेशब्द हो जाते हैं। ये गीत अगर आप सुने तो ये गीत में सभी बातें जो हमें जीवन में और आगे ले जा सकते हैं, अपना जीवन जो हम सुधार सकते हैं गीतों से हम सुन सकते हैं और अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर। जी हाँ मेरे सुनने वालों, दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती है निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं। जी हाँ रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होठों की मुस्कान बनकर तो कभी आंखों की पानी बनकर।

चारों तरफ देखो, इनमें भी कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है। इस शहर खामोशा में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। मौत से किसको रस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। बेटे, इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना, तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कहकहे लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख, दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस हंस हंस बेटा, हंस और हंस और हंस।

जी हाँ, जाने मन कहलाएगा हमको टाइटल सॉन्ग सुनाई है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से किशोर दाजी ने। नीलकंतिन अख्तन से फन तक ये सुंदर सा पिक्चर है इसकी और फिल्म है। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत, ये खेल में न जाने कितने रिश्ते बह

रफ़ी साहब से हमने सुने फिल्म तकदीर से ये सुंदर सा गीत हमको सुना दे कि आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर, अब वो तकदीर तो वो लिखते हैं पर बनाते हैं हम। जैसे हम कार्य करते हैं इस जीवन में वैसे ही हम अपना तकदीर बनाते हैं। फॉर द चे इमन पेन दूत फोर दाचे इमान पेन दूत पक ये अंफेल पपीर एंड फरक्रुकल ये हेत फोर दाचे इमान पेन दूत पक ये अंफेल पपीर एंड फरक्रुकल ये हेत गदान खुद प्रोबेर हेत फेल न्यू ग्लत ते स्ट्रेकन दैट इज नीत मोगलिक है हेत हार्ट फान मेंसन इस अस दिट फेल पपीर आज ये हेत eenmaal gekwetst heb, is het onwaarschijnlijk dat het weer zo wordt als daarvoor. Daarom, voordat je iemand slecht behandelt, denk goed na. Voordat je iemand slecht behandelt, denk goed na over wat je doet.

हर से सुनाई हमको किशोरदा जी ने कि ये जीवन है। हाँ सुनने वालों, यही तो है जीवन। कुछ अच्छे बातें हैं, ये है कि माना दुनिया बुरी है, माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बन सकते हैं, हमें किसने रोका है। और ये एक बात भी है कि चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, साहेब चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूट जाने से आसमान खाली नहीं होता।

फिल्म अलग अलग से निकाला गया है द नाइटिंगेल लता जी के आवाज में। जीवन की यही है कहानी। ज्ञान ज्ञान ज्ञान यानी कि कैनस, ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन के तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करती है। और एक बात और है, ये कि कलयुग है, कलयुग है साहेब, यहाँ झूठ का स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है।

फिल्म इम्तिहान से सुना दी हमको किशोरदा जी ने कि हो रही रुक जाना नहीं तू कभी हार के। मैं भी कहती हूँ सुनने वालों की रुक जाना नहीं तू कभी हार के। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं, खुद अच्छे रहो दूसरों को अपने आप दिख जाएगी। रुक जाना नहीं तू कभी हार के ये गीत से मुझे ये दो शब्द भी याद आ जाता है कि चलने का नाम है जिंदगी और रुकने का नाम है मौत। जिसे बहता पानी में सूरत ऑफ अनवेशख रहते हैं और उसको जो हम इस्तेमाल करें भी तो हमारे जीवन के भी उन्नति, हमारे शरीर के भी उन्नति मिलते हैं। और जो तालाब में रहते हैं जो पानी जो नहीं बहते उसमें तो गंदगी आ जाता है। इसलिए ये दो चीज़ मुझे जीवन में बहुत अच्छा लगा और ये मेरी जीवन की एक सहारा बनी। जो आज मैं हूँ तो अच्छा लगता है, सोचती हूँ कहाँ यहाँ से आपको हम भी बतलाते हैं कि चलने का नाम है ज़िंदगी और रुकने का नाम मौत है। तो रुकना नहीं है बल्कि हमें आगे बढ़ना है।

मेरे दिल में समा जाओ सुंदर सा राधा मोहन के ये भजन आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। कहते हैं भी कि आज आप जो कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है, आज जो आपका भाग्य है वो आपके पिछले किए गए

अच्छा बुरा कर्मों का दोनों का हिसाब चुकाना पड़ता है, तो कोशिश करें हम अच्छे ही अच्छा करें। अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें मुस्काएंगे, बुरा जो होएगा तो वो रुलाएगा।

सुंदर, अति सुंदर ये भक्ति भजन कार्यक्रम यहाँ से जो आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है, हम इसमें गोटा लगाए और अपना जीवन जो है आज जो मिले हमें देखने के लिए, इसमें जरूर से हम कुछ अच्छे नया कार्य करें, अपना जीवन जो है सफल बनाए। भक्ति बुद्धि से होती है मेरे प्यारे सुनने वालों, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान, जो जुबान है वो सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है ना, तो कर्म हमारा जो है वो सुधरता है। छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। सुबह की हर किरण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हर नया दिन तुम्हारी जिंदगी में खुशियां अवश्य

ये सुंदर सा सुंदर अति सुंदर भजन राधा कृष्ण के यहाँ से हम श्रवण करते हैं और ये म्यूजिक भी जो है इससे हम सब प्रफुल्लित होते हैं, झूमते हैं, झूमते झूमते मुस्कान चेहरे पे लेते ये दिन के शुरुआत करते हैं। तो दिन जो है ना आगे वाला दिन बे शाम होंगे रात होंगे ये सब हसीन हो जाएगा। प्रेम का वास्तविक अर्थ है सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणा होना। Zijn tegen uw medemens en niet alleen tegen uw medemens, maar lief zijn tegen alles. Zoals lief zijn voor uw eten, lief zijn dat u loopt op een mooie pad, lief zijn en dankbaar zijn dat we een frisse zuurstof hebben. Dat we die kunnen inademen om ons anders stap te zetten. Aur kehta hai ki jiska jaisa charitra hota hai na uska waisa hi mitra hota hai. Shuddhata hoti hai vicharon mein, aadmi tab pavitr hota hai. नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नई, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नजर कर दे, नई और नजर कर दे।

सोलफुल सोलफुल महादेव भजन आपके लिए। जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, वाकई में कि जिंदगी जीने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है, सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे।

ले आए, दिल को प्यारी सी मुस्कान दे जाए। हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले मेरे दोस्त, हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले कि जिंदगी तुम पर फिदा हो जाए।

शिव मेरे है और मैं शिव का हूँ। ये दो तीन लाइन अच्छे है, इसे हम सुने कि फूल दोबारा कभी नहीं खिलता, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, मिलते हैं लोग हजार के मिलते हैं लोग हजार मेरे दोस्त, पर हजारों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता।

अवश्य ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे, और वो पर्वत जो है वो हमारा दिल है, उसी में हम ज्योत जलाए। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। मेरी एक ही दुआ प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे।

पति पप्पा मोरिया सुना दी हमको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप और मैं चुन हूँ। ईश्वर करे कि आपकी हम सभी की जिंदगी सुकून से भरी रहे, आपका शरीर हम सबका शरीर स्वस्थ रहे और मन हमेशा खुश रहे, बल्कि जीवन का सबसे अच्छा योग क्या है तो यहाँ से हम बता देते हैं आपको कि जीवन का सबसे अच्छा योग एक दूसरे का संयोग है।

प्रयागराज के ये सुंदर सा भजन श्रवण हमने कर ली है। जीवन के सबसे महंगी चीज क्या है? जीवन के सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। वर्तमान यानी कि आज इस पल ये वक्त जो है। जीवन का सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। और ये एक बहुत सुंदर लाइन है कि जिन्हें याद करने से दिन अच्छा और सुबह खूबसूरत हो जाए, ऐसे कुछ एक लोग ही होते हैं। ऐसे ही एक लोग ही होते हैं, कुछ ऐसे ही लोग होते हैं हमारे जीवन में। और वो कौन है? हाँ हाँ

0: Dostlar, iyi kullanacağız.
1: उज़्बेकिस्तान से ये सुंदर सा गीत आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है। ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ लाए, जहाँ पे भी हो, जिस वक्त पे भी, जहाँ आप रहे, वहाँ के माहौल जरूर से, वहाँ के महफिल, वहाँ इर्द गिर्द जो है, जब जिस समय बस मुस्कुराते, हंसी खुशी में बीते। यहाँ से कुछ दो लाइन आपके सुनाना चाहती हूँ। लाइन के बोल ऐसा शुरुआत है, घटिया लोग, घटिया लोग। उसके एक उदाहरण है, उदाहरण की जगह से हम आपको सुनाएंगे कि घटिया लोग कैसे होता है। उदाहरण के रूप में ऐसा है कि प्याज को जितना भी प्यार से क्यों ना काटे, आंखों में आंसू ला ही देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग भी हमारे जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, जिन्हें हम कितने भी प्यार, सम्मान और इज्जत दे दे, लेकिन वो आखिरकार अपनी घटिया हरकतें दिखा ही देते हैं। तो प्याज के उदाहरण से घटिया लोग के एक उदाहरण दिया गया है, तो आपसे हम यहाँ पे बांट ली है। जी हाँ, आपके लिए अल्ताफ राजा जी।
2: जाने प्यार के नाजुक रिश्तों की गहराई को, मेरी आंखों ने झेला है रातों की तन्हाई को। मेरे दिल की हालत क्या है मैं जानूं या दिल जाने, मेरे अलावा कौन बताए जाके उस हरजाई को।

दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। अपनी ही रुसवाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस बस्ती में, किससे दिल का भेद बताएं। ओ हर जाई तेरे बारे में चुप रहना ही अच्छा है।

जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त, जीना इसी का नाम है। तो चलो हम आपसे बता दे कि जीना किसका नाम है। जीना इसी का नाम है कि शरीर को चंगा रखो, शरीर को चंगा रखो और दिमाग को ठंडा रखो, जेब को, जी हाँ जेब को गर्म रखो। जेब को गर्म रखो और यानी कि ढेर से पैसा उसमें होना चाहिए। और आंखों को, आंखों में शर्म रखो। जुबान, जुबान को नरम रखो। जी हाँ जुबान को नरम रखो। दिल में रहम रखो, दिल में रहम रखो और क्रोध पर लगाम रखो। व्यवहार, व्यवहार को साफ रखो, व्यवहार को साफ रखो और खास तौर पे होंठों पर, होंठों पर मुस्कान रखो। अगर आपके होंठों पे मुस्कान जो आ गए ना, तो आपके आंखों में शर्म रहेगा, जुबान नरम रहेगा, दिल रहम रहेगा, क्रोध पर आप यूं ही यूं लगाम रख पाओगे और व्यवहार आपके तो साफ हो जाएगा।

शामिल कर दिया गया है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में पंकज उदास जी को। घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। आपने ठीक सुना, घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। दर्पण को कहते हैं आईना, स्पीकल। कहाँ पर आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए? पहला है मुख्य द्वार के सामने दर्पण ठीक नहीं है लगाने में। मुख्य द्वार यानी कि होफ एनखांग, बैत के सामने यानी कि स्लाब कामर में आपके बिस्तर जहाँ है उसके सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। बैत के सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में दर्पण लगाना ठीक भी नहीं माना जाता है। दक्षिण यानी कि सौदन। दर्पण को अंधेरे में रखना ठीक भी नहीं माना जाता है। और कमरे में बहुत सारे दर्पण होना भी ठीक नहीं माना जाता है। सीढ़ियाँ के सामने दर्पण लगाना भी ठीक माना नहीं जाता है। सीढ़ियों के सामने दर्पण होना ठीक नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण का इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण। रसोई में दर्पण लगाना ठीक नहीं है। और दर्पण का मुंह नीचे की ओर रखना भी ठीक नहीं है। यानी कि मुंह नीचे यानी कि स्कॉइंस। और दर्पण को गंदा या धूल भरा रखना भी ठीक नहीं है। Het brengt alleen maar negatieve energie. Het trekt ook negatieve energie. Ye sab baat aapko bata diya gaya hai vastu shastra ke anusar.

पंकज उदास के आवाज में कि आइए ये मौसम आपके लिए। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपनों भी रूठे, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ।

जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है ना, जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है, तब सामने वाले चाहे आंसू बहाए या कसमें खाए, असर नहीं होता। नो, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। आज में जी लो, आने वाला कल का पता नहीं, पर भरोसा में है हम जीते हैं। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नाराजगी में, नफरत में या किसी से ईर्ष्या झगड़ा करने में बर्बाद मत करना।

पंकज उदास, पंकज उदास के आवाज में सुंदर सा गजल पेश किया गया। क्या क्या दोपहर में सोना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मिदाख दुच, इस दात वेल खुद इस द फ्राग। क्या दोपहर में सोना चाहिए, जरूर सोना चाहिए, जरूर से सोना चाहिए। तो आपको यहाँ हम बता देते हैं क्योंकि क्या फायदा है अगर आप दोपहर में थोड़ा से सो जाए। दोपहर में 15 या 20 मिनट तक आप जो सो जाए तो उसका फायदा क्या होता है, हम आपको यहाँ से बता देते हैं आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। द एनख एख्त आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर आप दोपहर में 15 से 20 मिनट तक सोते हो तो ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दिस हेल्पफुल फॉर यू लिखम, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है, दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड रोग का खतरा भी कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है। Door 15 tot 30 minuten te liggen op een middag heeft zijn voordelen. Moet je 's middags slapen? Een paar voordelen wat het slapen 's middags doet. Als je 's middags 15 tot 30 minuten slaapt, is het goed voor het lichaam. Onze hersenen werken beter. Middagslaap verbetert het geheugen. Ook het risico op een hoge bloeddruk neemt af en het hart blijft gezond en stress vermindert. Dus het heeft zijn voordelen. Als u in het gelegenheid bent, gewoon doen. Even 15 minuten, 10, 15 minuten hoog uit 30 minuten. Als u uitrust, bent u opgeladen. In sommige landen heb ik gehoord en ook gelezen dat ze tijdens het werk gewoon moeten stoppen om 15 tot 30 minuten om gewoon uit te rusten. Ze zijn gewoon verplicht om dat te doen, om het te kunnen opladen om verder te kunnen. और वैसे हम सूरीनामों में भी मेदाह दुच लेते हैं।

0: और शायद मुझसे
1: आवारा हूँ, आवारा हूँ। आपके लिए पेश किया गया है उस बेगिस्तान से, और ये गाया गया है हवस गुरु ही से। ये दिवस आपको, आप सभी को

स्पेशल स्पेशल आपके लिए पेश किया जाता है यो चुन चुन कर और आपके लिए यहाँ से चलाया जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों। आपसे बता दे ऐसे कौन सी फ्रूट, कौन से ऐसे फल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। हम आपसे बता दें बनान, बनान ओम स्वक्त फरमेदन फत फरवेदरन। बनान केला, केला यानी कि बनान खाने से आपके जो स्वक है थे वो फरवेदर हो जाए। बनान ओम स्वक्त फरवेद पपाया, पपाया तर फरबेदरिंग फॉन इट स्पेस फरतेरिंग स्टेल्सल, पपाया तर फरबेदरिंग फॉन इट स्पेस फरतेरिंग स्टेल्सल। मांगो जिसे हम कहते हैं आम, मांगो ओम द इम्यूनिटेट फरस्टर्कन। अनानास, अनानास, हाँ अनानास जिसे हम भी कहते हैं अजनास। अनानास देखन केल प्रॉब्लेमन खरानात आपल, खरानात आपल यानी कि अनार, अनार गेफ हेट लिखाम क्रख्त। ड्रुइवन, ड्रुइवन ओम लेवर प्रॉब्लेमन ते कालमेरन। वर्तलन फॉर हेट गेसिख्त वर्मोगन। टोमाट यानी कि टोमाटी जिसे हम कहते हैं ना, हाँ हाँ टोमाट रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल। सिनासापल, परसीना जिसे हम कहते हैं सिनासापल बाय अन विटामिन सी टकोर्ट। सिट्रून, सिट्रून, सिट्रून फॉर गेविक्ट फरलिस एन ओनगिफ्टिंग। वाटरमेलन, वाटरमेलन जिसे हम भी कहते हैं वतरामून, वतरामून यानी कि वाटरमेलन ओम हेड लिखाम

जिराफा जिसे हम कहते हैं अमरूद। जी हाँ, अमरूद रेखत डायबिटीज। कीवी फॉर अन खसोन।

तो आप इसे इस्तेमाल करें खाए पर समझदारी से। ये ना कह देना कि रेडियो पे आप सुने हैं तो ऐसा ही करना चाहिए, नहीं नहीं, अपना दिमाग जो है ना, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना कि आपका प्रॉब्लम क्या है और उस

यहाँ से एक घंटा के लिए रामदेव चैतू स्पेशल प्रोग्राम पेश होगा, हो रहा है। आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों, मैंने रामदेव चैतू खबर अब 19 दिसंबर 1942 en overleden in Rotterdam 6 juni 1994. Was een Surinaams zanger en harmoniumspeler. Hij is de mogelijke eerste Surinaamse zanger die een album in de muziekstijl buiten Ghana uitbracht en de eerste Hindustaanse zanger uit Suriname die doorbrak in het Caraïbisch gebied.

स्पेशल स्पेशल रामदेव चौथू स्पेशल आपके लिए प्रोग्राम पेश हो रहा है अपिका फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। सैन फादर मनेर रामदेव चैतू सैन फादर पुनीत शास्त्री शिव प्रसाद चैतू वसलान बावर एंड धारनास हारमोनियम स्पेलर एंड लीड स्क्राइफर फान हिंदुस्तानस म्यूजिक। हाई लेर द सैन सोन ऑफ यंग लेफ टाइट म्यूजिक स्पेलन एंड लीड हेम वेकलक्स ऑफ ट्रेडन टाइडन्स सेरेमोनीस इन द Hindus Tempel. De jongen trad vervolgens op met topartiesten uit de Surinaamse muziekwereld. Zijn zus is de zangeres Bidjan Waiti Chaitu.

कहूं मैं अच्छा, तीर किसे कहूं और किसे कहूं मैं भाला, आए खराब किसे कहूं और किसे कहूं मैं अच्छा, तीर किसे कहूं और किसे कहूं मैं भाला। तो ही बता जब दो दिल से दिल मिलता है तो दोनों दिल पुकार।

0: हाँ, ये एक रिलीजियस गीत है जो रामदेव चैतू अपने आवाज़ में यहाँ फाओ हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से सुना रहा है कि भूल बिसर मत जाना कन्हैया हमारे गलियों में आना, रामदेव चैतू जी हाथ अन अल्कोहल प्रॉब्लम जी, बहुत गड़बड़, रामदेव चैतू जी हाथ अन अल्कोहल प्रॉब्लम एंड ओवरलेट इन रोटरडम en overleed in Rotterdam in de avond van 6 juni 1994. Ja, hij overleed aan een hartaanval terwijl hij sliep. En hij was 51 jaar. 51 jaar. En op 51-jarige leeftijd overleed hij op 6 juni 1994.
1: चिट्ठिया लिख लिख हम भजैली, चिट्ठिया लिख लिख हम भजैली, सया नहीं आ

चिट्ठियाँ लिखत लिखत जो हमारे पीढ़ी सुनते हैं ना, और हमारे आने वाला पीढ़ी भी सुनेगा तो सोचेगा चिट्ठियाँ लिखत लिखत, क्योंकि आज के दौर तो डिजिटल हो चला है, फिर भी ये गीत में वो संस्कृत, वो हिस्टोरी इसमें हमको याद दिलाता है। मैंने रामदेव चैतु है लि तीन ताल म्यूजिक स्टकन ना एंड है हिंग द खस्किदनेस इन अस इन फॉर द पिलारन अंडर द इंडो कराइबिस म्यूजिक। U hebt het goed gehoord, ja, mijn lieve mensen. Hij liet tientallen muziekstukken na. En hij ging de geschiedenis in als een van de pilaren onder de Indo-Caraïbisch muziek. Zijn album King of Suriname. Zijn album King of Suriname in 1958 uitgebracht. En het album Let's Sing and Dance. Ja, zijn album King of Suriname en Let's Sing and Dance. Let's Sing and Dance in 1968 uitgebracht. Van de Surinaamse zanger Draupadi bleven

ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर

0: सैया धुन होए पिया धुन होए अब नहीं अरवा ना भावे।
1: सैया सैया धुन होए पिया पिया धुन होए अब नहीं हरे।

तो हम हैं दौलत के घर, पैसा जहान में तो नुकसान नगीन है, पैसा नहीं तो आदमी चोरी के तीन है, ठनठनाठन पे सारी दुनिया दो

फलक दिखा के काहे उनसे आजा, हाथ पकड़ के सैया जब तेरा मुखड़ा खोले।

करे सलाम, जिसका जेब है खाली उसका दुनिया में क्या काम।

Melody of Ramdev Chaitun. Special पेश किया गया है श्रीमान उस्ताद रामदेव चैतू के याद में। आपका फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से

सागर पनिया के गैले दोनों जने ना आपसे बता दे मेरे प्यारे सुनने वालों कि बैठक का गाना स्टाइल उनमें गला और कला जो है एकदम अलग स्टाइल का है। इसका बराबरी हमारे सुरिनाम के गायक के छोड़ के मेरे ख्याल से और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैठक गाना के गला जो है और स्टाइल जो है बिल्कुल अलहदा है। हमारा बॉलीवुड सांगर्स जो है, हाँ, इसे बहुत मेहनत करना करेंगे तो जाकर कहूँ से उतार पाएगा। मैं सोचती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो जो है अपना गला ख़राब कर देगा, पर ये स्टाइल बैठक गाना का स्टाइल के गला जो है लाजवाब है, लाजवाब है।

0: अनुराधा और उदित नारायण के गाए हुए गीत यहाँ से हम सुने रेगी म्यूजिक में, रेगी स्टाइल में, कि चाहा है और चाहेंगे तुझे हरदम।
1: कभी कभी बोर्डिंग गेट पे कुछ लोग सबसे पहले प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर सबसे ज्यादा देर तक अपनी सीट पर इंतजार भी वही करते हैं, और कुछ लोग आखिर में बोर्ड करते हैं फिर भी मंजिल पर सबके साथ ही उतरते हैं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप थोड़ा देर से चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए हैं, और सबसे पहले पहुंच जाना भी कामयाबी की जमानत नहीं होती। असल बात ये नहीं कि सफर का आगाज किस नंबर पर हुआ, असल बात ये है कि आप इस सफर को किस हौसले, किस सब्र और किस नियत के साथ तय करते हैं। आखिर में मंजिल सबको एक ही सच सिखा देती है कि वक्त और तरतीब से ज्यादा इंसान का सफर ही उसकी असली पहचान होता है। कभी कभी बोर्डिंग गेट पे

0: या बेलना इज जस्ट द पावरफुल थिंग. आपने ठीक सुना, आप ठीक सुना. बेलना बेलना बेलना क्या करा देते हैं. हाँ हाँ और कहते हैं
1: दोस्त वो नहीं जो हर रोज मिलते हैं, दोस्त तो वो हैं जो दूर रहकर भी दिलों में खिलते हैं. माना कि जिंदगी के रास्तों में दूरियां हैं बहुत, पर सच्चे दोस्त हमेशा ख्यालों में साथ चलते हैं. दोस्त हर रोज मिलते हैं, दोस्त
0: हाँ दोस्त वो नहीं जो रोज मिलते हैं, पर दोस्त वो भी होता है जो

3:30 हो चला है, 3:30 हो चला है शनिवार के हाँ दोपहर का कार्यक्रम यहाँ से हम सुन रहे हैं। और आज फिर ईयरली हो चला है, सातवां महीना चल रहा है, ये साल का सातवां महीना चल रहा है इस साल का। जो हमारे देश में आए हुए हैं उनको हार्दिक से स्वागत किया जाता है, जो यात्रा पे जा रहे हैं आपका यात्रा भी सफल होवे। और हमारे संसार में जो नई नई व्यक्ति जन्म ली है उनको भी हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और जो शरीर छोड़ गए हैं उनको सुख सहानी भी प्रकट है, और परिवार में भी हेल्थ स्तरक्त व्यंस किया जाता है। यही कहती हूँ कि आप जहाँ भी हो जैसे भी हो जरूर से कोशिश करना खुशहाल में रहना, क्योंकि खुशी रहना ये आपके बस में है, दुखी रहना ये भी आपके बस में है। अपना सोच अपना नज़रिया बदलो, बस अब तो ठीक हो जाएगा। जो तुम्हारा पीठ पाछे बुराई करते हैं बस उसी का स्थान वही है पीछे रहना, उनको पीछे छोड़ देना और आगे आप अपना कदम बढ़ाते रहना। आज आपको जो लोग हंसते हैं कल आप ही को वाह वाह करेंगे, आप ही के बगल में आकर खड़े होना चाहेंगे, तो आप जरूर से वही मुकाम पहुंचना।

Soul Suriname, Mr. Alright se. Oh, mere dil ke chain. तस्वीर बनाता हूँ और नहीं बनता है, तस्वीर बनाता हूँ, राजेश शिवनंदन जी की आवाज़ में।

बदलू के आवाज में सुने हमने कि भीगा भीगा प्यार का समा, दुख हो या सुख मैन एलिफमेंस, दुख हो या सुख वो अपना ही सोचे है। जो भी है जीवन में सीखना है जीने के लिए, बीता कल बदल नहीं सकते, बीता कल बदल नहीं सकते, और आने वाला पता नहीं चलता कि कहाँ पे कैसे होगा, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। मुझे प्यार की

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम राजयू फाहन सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरिए राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारी मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम।

आम को हम लेकर तुरंत चलते हैं अपनी जमजान की ओर, और हम चलते हैं तुरंत सूरीनाम की ओर, हम चलते हैं हमारी जनता सूरीनाम की ओर हम चलते हैं। तो सूरीनाम में भैया चिनुआ लोन सोना भी बड़ा जोर सा नाम है खोदे भाई, ना खाली जूका लोन खोदे है या का बोले ब्रासिलियान या दूसरा जात या आई एम गोल्ड खोले, चिनुआ सूरीनाम देश में भी सोना होना बड़ा जोर खोदे भैया। तो ऐसे चिनुआ सूरीनाम देश में सोना खोद के और फ्लिक लेके आयल है सोरखन हो परे, सोरखन हो फ्लिफेल पे उतरल है। हाँ ये बातचीत हो रहा है आय के, यानी कि उतरल है सोरखन हो फ्लिफेल परमारिबो में, बेनलान से आयल है और 4.5 किलो सोना रिवो खोद लेके आयल है भैया चिनुआ। तो उतरा सोना पाई से प्लेन लेके फ्लिकते लेके आयल लोग था सोरखन हो पे 4.5 किलो रिवो खोद में से बेनलान से आयल है। और बाद में उस सब एगो त्योता फिट्स में बैठे ले घरे जाई के भैया, अब घरे जात रहा भैया। रास्ता में एगो त्योता आलियोन आए ले जेमा 3 गो लुटेरा रहा, वापन ले के भैया कटली से ले के और बोले हैगा 2.5 किलो सोना ले के फरार हुई गे है रिखती खोमपर स्त्रांत में। तो पारामारी भूमि का रास्ता का नाम खोमपर स्त्रांत हुआ पे लेके ही भगल है भैया, 2.5 किलो सोना लेके भगल है। एकर बारे में अनखिफ्त भइल है तो सिपाही खोज बीन करे है कि के सोनवा ली से भैया, यहाँ बतावे है कि सोना 2.5 किलो लेकर लुटेरा भागे भाई। तो बोले नारे ऊपर फालकिंग से नारे खोम पर स्त्रांत अनखिफ्त भैल है, ऑफस्पोरिंग अनहोडिंग बिना भैल है, खाली ऑफस्पोरिंग भैल है। और जैसे जैसे इसके बारे में खबर रहेगा आप लोग को हम बताए, लेकिन तु ना हल्फ की नो सोना रू बारा ढेर है भैया। तो भैया गया दिन भी आ गया हमारा प्रोग्राम में, जन्मदिन बधाई हो। तो यहाँ पर और आगे चलते भैया, एक औरत के समय लाश ले पाई से भैया रवि, और ये पाई से सिरालको वेख कहीं सूरीनाम देश में, और एक औरत के लाइक मिलल है और वो गंधात रहा लाइक हुआ भैया। गंधात रहा मतलब कि अनबिंदिंग हो गया रहा, कई रोज से मारा पड़ा रहा वहाँ पे। तो जो हुआ सब गैल है तो पाई से औरत के बिना कपड़ा के भाई नंग ढिड़ंग औरत वहाँ पे पाई से, और बतावे फोकस इसते इन्फॉर्मेशन बोले एगो आदमी है अब सुख नरक्रोधन उगैल रहा तू जाने हैं सबहन घास भूसा बहुत जोर जुका लोन तूरे हैं दवाई वाई बनावे के। तो के सब हम बोले क्रोइदमान, तो ये क्रोइडा गैला अपन जंगल में खोजे तब ये लाइक हुआ पाई से, और बताई गई हैगा तो संस्कृत लेखा फनन फ्रो, और बताई गई हैगा कि अने जब उके नंग ढड़ंग मिलल है द इज द कांस खरोद नाम लग दैट इज मिस ड्राइव इन हिट्स इन दिस मोर स्पेल बोले तर प्लाट से वेरे लीफन लोग से लेखा फन फ्रॉ आन खत्रोफन, और बताई गई है गा दी इन हु वेरे है बत्रोकन इस बाई दी से साक वर्ड ना ऑन द सोख। अब सिपाही खोजबीन करे कि कौन के मारी से भैया, बताए फ्रॉ में तो लिखत हाइट्स क्लियर एन खलात हार, तो ई जुका ना भैया तो इंगी हुई नहीं का बोले ब्रासिलियान हुई कोई हुई, बतावे लिखत है क्लियर एर खलात हार इन देश के फलास नो हिन ऑफिशियल फॉर्मेशन आनखीफ तक गदान। तो कर मतलब उ जुका ना भैया हिंदुस्तानी हुई मलिनी हुई बा बोले चिकन बार है। तो ऐसे वांछित हो रहा है हमारी जनता, जैसे जैसे समाचार रहेगा आप लोग को हम बताएंगे। अब देखो भाई यहाँ और बात है, ओएम भैया ओएम जो है तो लोग जानो है
हम आप लोग के बताए थे कि एगो औरत रहा गयानीज रहा अपन स्टीवसोन के आंड बरिश के स्टीवसोन के आप लोग को बता रही पुराना साल के बात है, पुराना साल के बात है। औतियार रहा तो एगो द्रियन त्वेंतक यारख मामशेला तेई ओकर नाम रहा तो और बोले हेगा एगो आठ बरिस के लड़का के को स्टीव सोन के जेकर नाम रहा येडन अमोर भोला ओकर लड़कवा के पीठी में भोंक के लड़कवा के मार ढारे रहा और ये भैला दोनों प्राणी में झगड़ा भैला कॉन्फ्लिक्ट रहा कालकिता स्त्रात में तो ये लड़कवा के आठ बरिस के औरतिया भोंक के मार ढारे रहा वारा अखें ने वो उनका मेरे लीफ लूसे लिखा फा येदन आन खतरोफन और बोले है लाख ऑपरेशन इन प्लस ब्लूड एंड फर्दुंदे खीन टेकन फा लीवन लड़कवा आठ बरिस के मर गया रहा। तो आप लोग के शायद याद हुई एकर बारे में आप लोग को हम न्यूज में बताए रही ली और आज ओके यानी कि अब ओके फोर्दर यानी कि अब ओके स्ट्राफ मिले ले औरतिया के दोस्तों स्ट्राफ मिले ले औरतिया के अब बोलियो कि कितना दिन के जहलिया ई पाई से आठ बरिस के लड़का के ई और झका बोले हेगा एकर बारे में बड़ा ऑफहेफ हो गया रहा सूरीनाम देश में दोस्तों। तो ई औरतिया के स्टीव मुदर हैगा स्टीव मुदर हैगा बताई गई हैगा देर तक यार के ओके सेल जहल मिलल है 13 बरिस के ऑफ एज करे से जहल पुराना साल 2025 में ई 8 बरिस के लड़कवा के मा ढाड़े रा छोड़ी भोग के फुलखस एट ओएम वास एट दी आफन हेफक ऋषि और स्थान टेशन द फादर फानेसला तो फर और बताए गए हैं अपाउ एंड दीज फ्रेंडेन मांशेला आदमी एक नाम रा अपाउ और एक वाक नाम रा मांशेला और इतना एक्सकालेर भैला ना है चल अल्कोहल हाद खने तो दारू ढकोल ढकोल दोनों पर दोनों लड़े हैं और जाए के आठ बरिस के लड़का के और ये जान ले ली भैया इतना फुकदूब देखे ला इतना मोही लगे लड़कवा कोई के दे देवत पोस लेवत भैया के लड़का बिगी यहाँ आदमी कुत्ता बिलार पोस लेवे है इतना अच्छा लड़का सब कोई पोस लेवत भाए और जाए के आठ बरिस के लड़का के पेटी में और छोड़ी भोग के ये औरतिया मार ढाड़ी सो स्टीव soon raha verklaring van de vader bleek dat de avond aanvankelijk respectfully maar de sfeer omsloeg nadat zijn vriendin zich eraan stoorde dat hij alcohol aannam van een buurman bole auratia bole tu adamia bole tu kahe gele buurman ke daru pile batte daarna ontstond een woordenwisseling bole de verdachte ging volgens de woning binnen en sloot zich op getuigen verklaarde ki auratia vernieling aanrichtte in de woning en een mes uit de keuken pakte. Daarbij zou zij hebben geroepen dat zij de jongen wilde doden. Kort daarna brak de vader de deur open en trof zijn zoon in de slaapkamer. Toen hij een jagra kan leren, kie ook een mia gela buurman lage daarop pie. En aard bedis ke lardka ke jai ke. Jan se maar deze. Lardkwa je orat jak na raha. U lardkwa raha voor andere huwelijk. Met de 8-jarige jongen werd nog korte tijd een teken van leven waargenomen. Bolle hij overleefd ter plaatse van gevolgen van de steekwonden in de rug, waarbij zijn linkerlong werd geraakt. Volgens een medische was er geen sprake meer. Ja, toen Ibari Doekke baat, een buurman die eveneens bij de gebeurtenis betrokken raakte, bevestigde tegen de politie dat hij de verdachte na incident heeft vastgehouden tot de komst van de politie. और बीरमान पीपा कल्ले से तो ऐसे बात है बड़ी दुख के बात है दोस्तों बहुत दुख के बात है आठ बरिस के लड़का के ओ एम एस दर्तक यास तेखन तेखन स्टीव मुदर फान दोस्त तेखन तो ओकर बाप के संगे रहे हैं और ओकर लड़का के आठ बरिस के जान से मार दी से हमारी जनता बहुत बहुत दुख के बात है। तो रोबी गयादीन के साथ है सीफ बी से चित्रा अवतार भी आ गया हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं साथ साथ धर्मेंद्रा भी आ गया है धर्मेंद्र श्री भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं आपको बहुत बहुत स्वागत देते हैं सूरीनाम के लोग जितना हमारा प्रोग्राम की सुनते हैं आपको भी हम बहुत प्यार यहाँ से देते हैं। तो अब देखा भैया वापन जबरदस्त सूरीनाम देश में मिलल है और कौन वापन मिलल इलाखाल वापन मिलल है इलाखाल वापन मिलल है एगो पुलिस ब्यूरो के नाम बा पोस्ट है रेडी दोती
तो रेडी दोती जो ने हमारे जनाब लाका वात्रा कंती दोस्तों तो हुआ पॉलिसी कंट्रोल भले रेडी दोती पारा में तो बताई गई इलिखाल बंदूक दुई को मिले लेगा बंदूक के लाई मिले और साथे साथ दुर्योक्ष मिले भैया करिया निशान तेरानों में दुई आदमी के पकड़ान है और बताई गई हैगा रेडी दोती में ही मिले ले योगदन सफाना में Tijdens de controle van een voertuig trof een agent in de dashboardkastje een transparante plastic zak aan met een substantie die op marihuana leek. Ja, op een 30-jarige bestuurder kan pakken. Bolle bijrijder, ja, geweer middelen, kolf zaten, scherpe patronen. Op bolle ECT, ze hebben de terrorjaat hier over. Ja, ECT, ze hebben ganja, panja, pieke, heb de koop. Ja, AOM waarschuwt. Cultuur op traditie is nooit excuses voor seks met minderjarigen. Deko bhaiya minderjarige bole cultuur to jane saban bole hamal cultuur me hega ke minderjarige ke sange tro kar se cultuur jane benaland pe chota chota ladki ke saban byah kar dewe ya admi ho ya ladka le le to lunju ka ke ladkan ko jano hai to aise baat hai baki bhiya om ka bole hega upambar minister ka bole bole hega tu chahe jon jat ke baate chahe jahan jon cultuur ke baate mo bole vet me minderjarige ke sange to ke sex ना चाहिए करके तो ये बात महाबली जेमी भी बहुत दिन बाद आकर हमारा प्रोग्राम में जुड़ गया है तो भैया महाबली आपको भी हम स्वागत करते हैं इतना दिन बाद आइए हमारे प्रोग्राम में साथ ही साथ फनेसा दोस फनेसा भी आ गया है फनेसा आपको भी हम बहुत प्यारो उस्ताद के उस्ताद महा उस्ताद सुंदर हीरा लौंडा के नाच वाला भी आकर जुड़ गए आप सबको बहुत प्यार यहां से देते हैं और स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में जुड़ने को तो देखो भाई क्या हुआ बोले हैगा ओएम बोले है ना दुर्कलक बोले बोले कुलत्री ट्रेडिशन में ना है मेंदर यारख के संगे सेक्स करके द बूस का फॉलोक नर आनलेडिंग फॉर एन रिसेंट स्ट्रफसाक एंड इट फॉरऑल करेक्ट ऑफ द बस्केमर फॉर मेंदर यारखन ओएम बोले है culturele gebruiken, traditionele en traditionele overtuigingen om familieafspraken nooit worden gebruikt als rechtvaardige voor seksuele misbruik of andere strafbare feiten. Toen jij nega, deze banka bole hega, bole palwar bole, beti wa ke biak kardi, ya beti wa ke biak kardi, tu minder jarig baate, mak niet, o bole betaave hiya, o hem bole bole, usab excuses na hai, ongeacht de achtergrond van de betrokkingen, bole tu chahe jon baate, bole wetboek bole hai, सबके कानून एक है सेक्सुअल हैंडलिंग वार बेस्प्राक इस फन बिनन ड्रिंगर फन इट लिखाम बे एन किंड यंगर दन 12 यार कुनन लेडन तो तो गवांगने स्ट्राफ आन मक्सिमाल 15 बरिस के 12 बरिस लड़की से और का बोले तू सेक्स के लिए 12 बरिस लड़की के नीचे तो तो के मिनिमाल 15 बरिस के जहल हुई से के भैया लोन श्री नाम देश में तो याद करियो श्री नाम के वे थे तो हमारे देखा जाए श्री नाम से सुभाष भगवो भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं तो भाई सुभाष आपको यहाँ से ने दनहा शहर से हम बहुत प्यार देते हैं और स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेने को तो भाई सुभाष आप तो सुरीनाम देश में हैं तो वहाँ कानून जो है तो सबके लिए बना है ना कि जब तू झुका बाटो तो तुके तो मेंदर यार के संगे माखेगा लड़का बनावे के सेक्स करे के वेम बोले बोले द वेट इज फॉर इधर इन ओक सेक्सुअल हैंडलिंग buiten een huwelijk met iemand van 12 jaar of ouderen, maar jonger dan 16 jaar zijn strafbaar wanneer sprake is van seksuele binnendringen. Ouders, rabber is een nietje, biabina, tjahin kareke. Daarom staat een maximale gevaar van bara briske. Ourobole geldboete van vijfde categorie. Het OM aandrukte dat zedendelicten tegen minderjarigen ernstig misbruiken. Bolle zijn er onder geen enkele omstandigheden worden gecontroleerd, mensen. Bolle controleer na hoe, bolle ze van tjupe tjupe. Or kalle waarvan u strafbaar zijn, willen burgers, ouders, familieleden, gezagdragers en andere betrokkenen worden opgeroepen signalen van seksuele misbruik serieus te nemen en melding te maken bij de politie of bevoegde instanties. Willen te melden, kan je sipahime.
और कि कोई अब देखो एगो यहाँ बतावे एगो रसन तो साग भैले एगो लुंडा का नाम बा सनाईपी। बीते हुए हफ्ता में हम बताए रे भैया सनाईपी भैया तुलन शौचालय में ईदी आप देखो ये तो इस सनाईपी के भैया कपड़ियन जहलिया में बड़ी मार मार लाते लाते मारी से सुभाष लाते लाते मारी से ओणी का कर ले रहे को 15-14 बरिस के लड़की के स्वांगर कर ले रहा फिर 3 यारख में ही एक स्वांगर कर दे रहा तो एकर माई गेल रहा नालिश करे बाकी अपी का बोले है बोले तो हमार औरत है बोले तो लो हमें जहल ना दे से बोले हमार औरत है

cultuur als vrouw worden beschouwd. बोले 13 बड़े 14 15 बोले 7 ओके छोटा लड़का ने इतना देखिए को औरत ने देखे हैं फॉर ऑल द फैमिली दैट मी इज देम दैट वाज एक्टेड विद द नेशनल वेट वारन इमान पास फ्रॉम 18 यार ऑल फॉर वाज न वर्थ खजीन तो पहले तुलन जानो भैया छोटा छोटा मिंदर यहां रखे लड़की लोग के से ब्याह कर दे वत रहा तो आप लोग इससे बचाए कर रहना जो कोई नालिश करे भैया तो झुट्टे के जियो 15 बड़े जहल में बैठ को और फ्रोईती करियो गाना गईयो ते तो अच्छा बात ना है। हम लोग के सुरीनाम देश में एरमा राम तहल सिंह आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। तो एरमा सुरीनाम में एगो राम श्री राम स्कूल है श्री राम स्कूल है आई हैगा बोत्रो मांकी वेख लिफोर्नो में बा जैसे यहाँ बताई गए भैया तो स्कूल में बड़ी बरैया गए ले भैया बड़ी बरैया गए ले वहाँ पे हाँ तो बरैया को मिलो स्कूल है ऊपर से दुई तारे के को एंड एग्जाम रहा मिलो स्कूल में और बताए गए हैगा बरैया हुआ गए ले आल रेस्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन एग्जाम अफलेखन बस्ता द फ्रीज दस स्लाख तो फॉर वर्ड फॉर द इज कट बरैया बड़ी कटाई काटी से लड़कन के भैया द स्कूल ऑन मोखलक एंड लोकलिस हियर एंड वार हेड बाय इन नेस स्टार्ट गेफेस्ट द स्कूल हिप द अफदेलिंग बताए गए हैगा कम सरियात की करी से और बोले ना तो स्कूल बफिन से नाम ओपनबार बखराफ प्लास स्कूल ये के बगलिया में हुए कहीं पे भैया काबल बखराफ प्लास है और बोले बेरी पेन है दी दिख्त बखरुईत इस में हुखे बोमन और बोले इवन इस इन द पंद फन अख्तर सेड़े फन द स्कूल दिख्त बखरुईत द स्कूल लेडिंग दूत एन ड्रिंगन बरूप तो बेरी पेन है और बेरी पेन में बोले भाई बड़का बड़का जंगल परल है भूस है स्कूल के पीछे भूस है तो वही मसे कहीं बरैया रहा और लाई के लड़कन के काट ली से तो लंटी के चाहिए बेरी पेनों सफा करे हुआ इंतजार भैया और वहाँ के बेरी पेन बहुत कम थी सफाफा हुए हैं वो और वहाँ के बेरी पेन में स्वेरफट भी सूते भाई सफर हमारी बहू में और पास हुई है तो भैया उसे अपन अड्डा बनाई से और लेडिंग पर जइयो सेफ बे के बेरी पेन भैया तो हुआ जो मट्टी के जहाँ हुए है हुआ ना देखा इतना बड़का बड़का घास भूस हो गए है लंटी जा कुछ दिन बांध कौन चीज काटे है और मायर से काटे कुछ से काटे दवाई मा अंदर हाउत वर्थ नीत तो वही समय बेरी पेड़ में जनावर घुस घुट बैठे वरफान मीन से वो भी अलमाल वो क्यों श्री नाम नहीं फरकलाई का मैं नीदरलैंड एक बार उस अंदर सोम मैं वो क्यों तोक दरू फरकलाई बीच हम प्रात सीता गौरी चरण गजरी आपको भी हम प्यार करते हैं कि यहाँ के बखरा फ्लास्ट पे तू जइयो भैया तो सोचिए हम कोनो पार्क में गई ली बाटी लाते उदार एलग से सोचिए कि हम कोनो पार्क में बाटी बांगे बनावल एकदम चिक्कन है चारों बगल फूल बोवल है भाई दिन भर आदमी हुआ काम करे स्कोन मार्क करे है और तू जइयो भैया तो हुआ तू बेरी पेन में बैठ के एक गिलास कॉफी भी पी पइयो भैया रिस्टक से अपन फैमिली से अफस्केट ले पइयो जो उनके मट्टी परल है घूम सके भैया इतना नेचर्स बनावल है दैट इज ऑल ऑफ बखरा फ्लास इन नीदरलैंड तो बोले जो ये कम सुरीनाम नहीं फरकलाई के मैं नीदरलैंड ऑफ अंडरसोम मर मेंसे एक शेख वत द वारहेट इज और यहां पे श्री राम स्कूल के पीछे जंगल लगल है जहां इतना ढेर बड़का बड़का भूस है और बरैया जाए के स्कूल केंद्र के लड़कन के बड़ा छेदाई खींचे दिसे वारफन हुआ पे एन एग्जाम रहा मिलो स्कूल के तो सन्नाम के जो रखेरिंग हैं उस सबसे हम बोलेला तरी तुलुन तरी चिक्कन निक्कन करियो जहाँ लड़कन हैं चारों बगल चाहे सफा करे अपने देश के सफाई जो नहीं अपने हाथ में है दोस्तों कोई और ना आए के करी दतमुतरी जैलफ खानदून रखेरिंग है पिकट ओवर मेंस भैया रखेरिंग तो जब देखियो भैया तो अपरे में लड़ते रहे हैं अपरे में लड़ते रहे भाई जब देखो तो लड़ते रहे हैं रखेरिंग में तो सोचो तो कैसे चीजों आ जाएगा कैसे चीजों आ जाए अब देखो दे अना में भैया का बोले हुआ स्टार्स बखरूतिंग के तो इडेशन सेशन ट्विन तक के बातचीत हुए हैं यानी कि स्टांस बखरूतिंग 2020 के वहाँ बातचीत हुए हैं और उतरे में जोगी भैया इरफान तनमी हैं भीषण बरिश से बैठल हैं और जोगी फ्रॉक स्टाइल करे हैगा वहाँ पे रखेरिंग से क्यों सुनी से कि जो खले से हुआ के आदमी लोन पलवार धरे ई धरे

धरे थे एक बारे में हम लोग के फोर सीटर जो ने देना के और अश्विन अधीन के नामो ही लगल है तो अश्विन अधीन एके बोले तो कबवाई से बस इतने में अने का बोले हैं गया दिन मतलब कि अधीन जो फोर सीटर अश्विन अधीन है गा देना के और जोगी के मौका ना दे इसे बतियाई के बस जोगी बोले है उसे बोले तू हमें मौका ना दे ले बतियाई के बोले कि तू सोचे सुमान बोले रहा कि तू सबसे सलेक्ट देना फोर सीटर बाटे तब तो अधीन के लगल गुस्सा भैया बस ओके जबरदस्ती बोले तू यहाँ से साल में से उड़ के तू भाग गया बोले तो कहीं यहाँ पे नूडक तो के अंतरिम कर दे इसे बोले नहीं तो माफी मांग तो अधीन यानी कि जोगी बोले कौन ची का मांग बोले माफी तो के चाहिए मांगे के तो फिर यहाँ पे पार्लियामेंटरी जोगी ईबीसी में करवाने में बोली से बोले हैगा जोगी बोले हैगा मोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अधीन फरखान साल फलातन बोले फिर यहाँ पे फरवेद अधीन पार्टाइडक बाउ अब त्रीदन है ओपसी ले ने बोले कि जब ओकर आदमी फिर यहाँ पे यानी कि एनडीपी के बोले हुआ पे चिल्ला है जब कुछ करे तब बोले ओके ना बोले और दो अब दसा के बोले लाच खून प्रात अब बोले जब हम एगो बलंग रेक पूछे तब बोले बेर बेर हमें काटे बेर बेर हमें काटे है अब बोले कि जो ने हम अब स्थान पाए ग्रुफो आई क्यों हमें निकाल के बहिरे करे बोले वही चीज बोले जान बूझ के करी से जोगी स्टेल दन अधीन द फोर सीटर स्टूल सो मुतर फरलातन आसे द पार्लियामेंट नीट ओपन करेक्ट एंड ऑन पार्टाइडक वेइस कैन लेडन दार भी बना दुक्त रहे द क्वेस्टी फॉर हिम नो नीट इज अफगेस्लोटन एक बेन नोख नी क्लार में देसे साक तो ये बात है जोगी के हमारे जनता और अश्विन अधीन के बातचीत हुए है हमारे दोस्तों और आगे को अपना प्रोग्राम को हम लेके चलीला सिपाही लोन भैया सूरीनाम के सिपाही ना सबके विश्वास ना रह गए है विश्वास ना रह गए भैया हीरा हाँ ड्रग्स के कारोबार करे भैया तलोन जानो है संदरई पे पकड़ा रहा एसएलएम के मोतर के नीचे लुकवाए रहा कई सिपाही पकड़ा ने भैया अब यहाँ पे देख एक बात और है सिपाही पकड़ी एगो लौंडा के हाँ तो ओकर माई सुनी से कि इसी पहिया घूस लेवे है सिपहिया घूस लेवे गो बड़ी खादीर कि और लुंडवा के पकड़े रहा दृश्य के साकोक में तब मैं गए ले सिपहिया लगे बोले हमारे बेटा हुआ के तू छोड़ दे बोले तो के हम पैसा दे बे ब्रिगेडियर फन पुलिसी एमएफ के बोले है तो ओके बोले हम तो के पैसा दे बे तो ओके बोले है 2500 यूरो

0: paddenstoel. Toen boleh arai hajar 2500 euro. Boleh cahinga oke DWK. Ta iya ratia bicari apan bitua ke chodawe khatin 1250 euro. Oke deze. Zij maakte daar op 1250 euro over. Met de afspraak dat het resterende bedrag zou worden betaald zodra haar zoon was vrijgelaten. Afspraak Razi Paya kwam dit ook over Makrela. 2500 voor de rechter चल के हेखनेस van 30 dagen is verlengd. अब मम्मी भैया बहुत teleurgesteld हो गए. तब इसको तो बोले जे तू हमारे बेटवा के ना छोड़ाई पहले भैया हीरा तो हमार 1250 इरुवा लौटाड. और तू जाने हैं कभी कभी कोई के जेब में जब पैसा चल जाए भैया तो चपक जाए ना निकल के फिर तरक जाए और नहीं बोरो हुई के अंते चल गए वो बतिया है तो सीता गौरी चरण ना तो ई अब सिपाही वेकर कर रोके हम ना दे बे 1250 एरुआ बस ई औरत काकेज बगैर आनखिफ्त कर दीस. अब देखो भैया चकल्लस जा आनखिफ्त करी से भाई बस ई ब्रीखा देर के ओही के कोलेका पकड़ के बंद कर दीस. और दुई तारीख यूली के चल गए ओए में भैया चीजवा फॉर द रेक्टर चल गए हैं. और बोले ना द अफटिंग में द ओए इस इन फर्सीग्रिंग स्टेल्थ जोन जहलिया में बिरिखा दिरवन दूसर कोई के बन करत रहा. अब अपरे जाए के ओमाम बन है भैया. देखो अब तू घूस लेवे तो भाई बताए सिपाही लोन हुआ बड़ी बनमासी करे है. जेके तू सोचियो सुरिनाम देश में कि सिपाही हमार बड़का कमरा थे हमार बड़का दोस्त थे हमें बस करम करेगा. देखो वही सब कौन कौन धंधा यहाँ पे करे है. तो गीता जी भी आ गए हमारे प्रोग्राम में और यहाँ पर जुड़ गए. आप देखो भैया एक औरत बहुत रोवाई रोवे भाई. इतना रोवे है कि हम काम बताई ओकर आंस हम देखेला तो हमार आंख में से आंस चुईया है. तो बातचीत हो रहा है ये औरत के बिचारी के और ले गए है एक आदमी पेंशन में. तू जाने तो कहाँ पेंशन वन है भैया हीरा सुरिनाम देश के बातचीत हुए हैं. तो ले गए पेंशन में भैया और ये लड़किया के ले गए औरतिया के. और इना है कि बहरे के औरत है या कोई रा ओकर फ्रेंडियन रहा भैया कई बरिश से संगे यानी फेफ यार के उस सबके रेलाक्सी रहा फेफ यार रेलाक्सी रहा. और ले के पेंशन में तो यौरतिया के हुआ झगड़ा भइले तो अनमिया यौरतिया के बारे में संदलन करी से भैया पेंशन में परमारी बहु में. और बताए गए हैगा बोले हैगा इंफॉर्मेशन बताए कोपल दान इन कायो कमरा हिर कर ले रहा. और बोले इन खते औरतिया रोवत गले रिसेप्शन लगे. और बोले हम में तो सिपाही है काकल कर तो सिपाही गए ले तर प्लेक. बोले हैगा अरे फिर द फरत्रोकेट कोपल उतरे में कोपलवा चल गया भैया दोनों चल गए रहा लड़ के getuigen verklaarde tegenover de redactie. Bolle de vrouw aangaf ki 5 baris hem relatie ba wat de aanleiding voor de mishandeling na bataij. Sipahi awat aan hame jena dunu me phin summat hoi ge bhaai wan dunu phin chal ge sipahi koi ke na paai se lekin news me to aai ge hai dosto ti bari bari duk ke maan te ye hapun verhouding met iman ye houd van iman jhagda ladai hoi hai ma itra ki na tu koi ke mishandeling kar aur कोनो कोनो कोनो चाले भैया. और मिसांदल करिए पेंशन में. अब आज पूरा दुनिया जान गए हैं अब ये प्रॉब्लम में परल है दोस्तों. अब तो लोन जानो है भाई निकेरी के बड़ुकिया क्वारंटाइन और गयाना के. हाँ तो भैया दो रोहित भी आ गया है हमारे दोस्त भैया रोहित देव नारायण भी आ गया है देहा एयरफास्ट के मैनेजर है. तो रोहित भैया यहां पर मेरे ख्याल से
1: हाँ

चलते हैं अपना समाचार। तो हम जाए भैया गायाना और क्वारंटाइन की ओर, हम जाए ला निकेरी के ओर भाई, निकेरी के ओर हम जाए है। तो आप लोग जानो है चांद की मात्रा बुड़की बनावे और बुड़की माता बनावे निकेरी से लेकर गायाना में, बड़ी खुशी रहा आदमी नोन कि कोई ब्रुके, लेकिन रखेरी लोन जो रहा बहुत क्लाख करता कि संतोखी मांगे ब्रुकी बनावे, मांगे ब्रुकी बनावे, बोले रास्ता बना ये बना बाकी अब इस सिमोन्स और एनडीपी रखेरी एनपीएस रखेरी के लिए से तीस बोले है ब्रुकिया चाहे दोरो बने के, बोले ब्रुकिया हम लोग के चाहे बनावे के। तो अब बात ये चीज भले सिमोन्स गैल है और कहा बोले गयाना के मिनिस्टर से इरफान अली से बातचीत करी से प्रेसिडेंट इरफान अली से कि ब्रोकिया हम लोग खसामलक बना खोई गयाना से और वो काबले निकेरी निकेरी के।

चिनोआ भाई जो हम लोग के ओवी के मिनिस्टर है गा, ओवी दया नाम का बोले है, मिनिस्टर स्टीफन स्टंग बोले है, नेशनल असेंबली में बोले बोड़किया बोले गयाना ना बोले फ्लोरिडा बोले हम नून बना कोई सरनाम के आदमी बनाई बोले हम लोग गयाना से पैसा बोले हम लोग फ्लोरिडा मांगेला अपने बनावे ई बांध बोले है चिनवा ओवी के मिनिस्टर स्टीफन सांग बोले नेशनल असेंबली में बोले हम लोग अपने बनावे बोले अपने तौल धरबत एकर बारे में इरफान अली जो है इरफान अली हुआ से बमकल भाई कस के तू जाने लावला प्रेसिडेंट ना है गया ना के इरफान अली तो वो बमकल की एक और भाषा हुआ पे असेंबली में समय बतिया है बोले बातचीत भैले है कि निकेरी के ब्रुक्की जोन है गयाना के बोले हम लोग दोनों मिला मिल के बना कोई सरनाम और गयाना बोले ई जौन मांगे बोले ने बोले हमसे अस्परा के प्रेसिडेंट से सरनाम के और वो है गा सिमोन से और बोले हम लोग के अस्परा के संघे बनावे हम लोग तो बोले कि कौन ची अभी बतिया है बोले ब्रुक्किया चाहे खसामलक बनावे हम लोग के तो असेंबली बकेन करे बोले फलीरक हम लोग के मेडल से बहु हुई तो यहाँ पे जनता लोन बड़ी बड़ी चीज बतावे भैया असेंबली में बोले है और बहरे सोशल मीडिया बोले बोले कहे सरनाम अकेल मांगे ब्रोकिया बनावे बोले बौशे ब्रोक तू लो अपरे जाने कितना लगल हो कितना ढेर सब खाई पी के बनाई बोले यू मांगे पैसा बनावे का की मांगे अकेल बनावे वजह चिनवा आधा पैसा मजे गया ना जा आधा दे पैसा तब तो तुस लखवाना बनाई पाइये यू बतिया है तू सलखवा ना बनाई पाइये तो ई बतिया खातिन जनता लोन बोले है कि काहे मांगे सरनाम अकेल ब्रोकिया बनावे सलाख मांगे बनावे का तो गयाना के रखेरिंग बोले है का बोले हम उस तांतमेंट हाउद करेला क्वारंटाइन रिफीर के ब्रोकी गयाना से बोले हम लोग मिल के बनावे बोले परमारी बिफ ऑन फंगन ओवर मोगल का कुछ वे सकिंग ऑन दंस द बरिख्त इन सुरिनाम द बरिख फॉलीडिक सेल्फ विल फिनांशियरन एंड बसितन बोलो से मांगे अपने बसित करे अपने मांगे फिनांशियर करे और बोले है संघ हीफ इन गुयाना तोर फ्रागन गलेद ओमदात द ब्रुग tot nu toe nog steeds werd gepresenteerd als een militaire megaproject tussen beide landen. Obolehega Guyana nog altijd uitgaat een gezamenlijke ontwikkeling. Quarantainebrug is een brug die gezamenlijk wordt besproken als een gezamenlijke project door de regering Guyana en Suriname, stelde Ali. तो एक बारे में जैसे जैसे रही हम बतावे बोले है जेनिफर सिमोन हे वखरी पंदर सुरिनाम बेसक वास डील फॉर एन बस्टांड यूरिडिस कादर आफ्टर ऑन द टर्बल गयाना सेन एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरबरेनिंग आल हाथ अफरोन और सुरिनाम में कहा भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक से हुए है वहां पे एक गो कम करते हैं एक गो आदमी डेवलप तीन तीन गो सलारस है कितना आदमी बैतलांत में है और ओकर सलारस एक भाव है और वहां एडमिनिस्ट्रेटिव ना जाने है कि रमिया कहां है काम पे आवे कि ना आवे है तो एक बारे में और कहा बोले है मिनिस्टर फंबेन लांस जाके कहेगा और मनीरस फंबे बोले है कि तो कह चुगली करे के बोले चुगली वाला चुगल खरवन के बोले है रोहित चुगुल खरवन के बोले हमें तू बैल करके बताइए कि कौन अनमियन दुई गो तीन गो पावे है का बोले है सलारस बोले जो ने हम ओके पकड़ी बोले जो ने हम ओके पकड़ी बोले हमें बताइए गो एनोनिमल लाइस धरी से टेलीफोन नंबर बोले चुगुल खरवन बोले बताइए मत तू जाने भैया चुगुल खोर बाड़ा ढेर दुनिया में ना अपने खाइन दूसरे के खाइन दी बाकी देश के चूसे है भैया तो बोले बताइयो तो ऐसे बतिया है देखो ब्रोकिया जो है 3.1 किलोमीटर के ब्रोकी रे भैया छोटा ब्रोकी ना है अति से ब्रोक फन 3.1 किलोमीटर मुड फॉर आउट द फियर फॉर बीइंग टू सोउद्रेन एंड सुरिनाम इन मोलिसोन क्रीक इन गयाना फॉर फंगन यहाँ बताए गए हैं प्रोजेक्ट वर्क हसीन अल बलानाई के फॉर हैंडल टूरिज्म रुखियाल रीजनल फॉरबिंडिंग जिसन फ्रांस गुयाना एंड ब्राजील के बारे में भी है गया दोस्तों तो हम और आगे को अपना प्रोग्राम बोली ब्रोकिया के बारे में बता दें वन केरी के भी हमारा प्रोग्राम सुने हैं और आप लोग को जरूर जानना चाहिए कि प्लानिंग हुआ कैसे एक सिपाही भैया चोर के न गए है दागे इरमा राम तहल सिंह आपको भी स्वागत करते हैं फिर से एक बार हम यानी कि हमें फेसबुक हुआ निकाल के फेंक दे रहा है दोस्तों माइक बैनर अलवेर तो
सिपाही भैया ना गए ले चोर के दागे अपरे के दाग ले। भैया सुरनाम के सिपाही के बात बतियाला हमार जनता। बोले जानी ये मुद्दी निमें से नहीं लख है, हम नु सब के ना इट लख करी भैया। जैसे समाचार तो बताइला तो बताओ गए 26 तारीख नवंबर के एगो सिपाही भाई अपने पिस्तौल से अपने आप के दाग ले से फरकलाद दथा सुन दौड़ नारकोटिका ब्रिगेड वास आरकहो द नादत है में ड्रग्स इंसर बसी था। सिपहिया बोले ओकर बेटवा के नारकोटिका ब्रिगेड जो ड्रग्स के बारे में ओकर बेटवा पकड़ ली से। बोले द फ्राउ सोफिया फिया है बट फॉर नोमन के ओकर बेटवा और फ्रेये फुटन सोदन वार्डन इन क्रिस्टल असे 2500 यूरो अन पॉलिसी बताल्दे। ना ते ई है एकवा भैया का बोले है पैसवा वाला, लेकिन जो सिपहिया अपने आपके दाग इसो के है इसल खवेल तरा भाए और जाए के दाग ली से अपने के। तो दोस्तों और आगे को हम जाना चाहते हैं और ये बात है आदमी बड़ा जोर कसीनो जाए सुरीनाम में भाए। हाँ कैसीनो में भैया तो एक आदमी गए ले कैसीनो में बड़ी ढेर पैसा लेके भैया एक ताज पैसा लेके गए ले कैसीनो में। और जो गए ले कैसीनो में उतना ढेर पैसा लेके बस कोनो कर तस्वीर मार दी भैया तासन में खरोट खल बराखन खस्तूलन फन कलांतन इन द कैसीनो। अरे कैमरा है माँ भाई कैमरा में चाहिए पे को दरियन दर तक यार के चिनुआ बीते हुए हफ्ता में बोले ओकर तास जमा हजारन अमेरिकन डॉलर रहा। बोले कैसीनो एगो दो मने स्ट्रैंड में बोले हुआ से सबन चुरा ले से बोले जमा देर तक दैसन डॉलर रहा 10,000 एसआर दे रहा मोबाइल टेलीफोन रहा। बोले हम खाली तसवा छोड़ के बोले हम गली टॉयलेट। अरे भैया उतना पैसा छोड़ के तो के लगल हैगा टॉयलेट तो अपन तास छोड़िए तो उ तसवा जे छोड़ी बस दूसर कोई मार दे इसे चिनवा तू गधा बाटे। कैमरा बेल ब्लैक दत एंड मान द टास्क ऑफ सेंस कोट हाथ एंड दे इज अ टेजस डील नाम रुलेट ऑफ द ग्राउंड लीड फॉलन एन अंडर बसुक द अख्तर हेमस्टोन हिव द टास्क में सेन फुट ना से टू गट्रोकन एंड इज एर वervolgens मी van doorgegaan. Familieleden van de man die eveneens in het casino aanwezig waren hebben niets gemerkt van de verdwijning. De politiebureau centrum ik er waren met khojmin kare de chinwa kal bane raha aur bole palwan na dekh pai sab to khali gutti taake hua bhaiya to yahan bataye gaye hai dar bhai 50,000 sd bait gemaakt batawega afgelopen manger ke aangifte bhil hai dit keer werd een klant in de casino een 50,000 sd bait gemaakt. ओक दिन अंडरसुक इस हंड्रेड से दो ही राइन चोरी हुई चुका भैया। बीते हफ्ता में वहाँ पे 50,000 ऐसा दे भी चोरी हुई गया रहा। तो ये है हमारे वहाँ जनता। हम सोचे आप लोग को एक गीत हम सुना दी। अब एक को गाना ना सुनाई ली है और कौन गाना सुनाए वो चटनी हम जाल

दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है तो हमें तो रोकना पड़ेगा अभी, शायद और आगे को हम फिर से चला देंगे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेके, यानी कि समाचार काफी है भैया हीरा, आपको हम स्वागत फिर से एक बार करते हैं। और तो अब देखो हुआ है क्या भैया, सोमो हार्जो का बेटवा जाने पॉल सोमो हार्जो भैया बरोन तो रहा पे एल फ्राक्सी फोर से तो रहा फ्राक्सी लाइदर रहा, तो ये आदमी फिर यहाँ पे के ग्रुप में से फिर से एनडीपी में चल जाए, अब फिर यहाँ पे में ब्रंसवाइक से झगड़ा भैले, बड़ी बड़ी बातचीत भैले, बड़का बड़का बात बोले, अब एक के का बोले स्टार्स मुश्किल हिंग में मिलल है मुतर बेरे ओ एम खान। अब बरोन तो का करे भैया, अंदाज बहुत रख रहे हैं, एगो लेस ले फर करे से दे आना के जेमा 200 नाम है स्टिक थिंग के, और बोली से कि जेमा इन दिन द नेशनल बोले पे आर बवेर द एयर द दैट वाज स्ट्यूर्स इन होप फॉर सीस लीडर फन ऑफ हैप्पी देज द फोर रखे प्रयोग फिया स्टिक थिंग इन दसन को जगह ले से, और बोले खाली 1000 डाला भरी से, बोले अब कोची हुए ना nuanceer de hei zijn eerdere uitspraak en stel dat hij de grondconversie door een bepaalde partij werd gebruikt om witwassen te faciliteren. Volgens de politicus gaat het om een eerste dossier en zal hij stap voor stap bolega septoke batabe ik er baare me je minister se van grondbeleid ke poochie se te bole abbe kuch na haiga jono sabke bewijs se ik blijf er bij de grondconversie door een partij werd gebruikt witwassen van de faciliteit. और बोले है एक बारे में फिर यहाँ पे फ्रक्सी लेडर आशीष कुमार गयाधीन बोले है, बोले ये बहुत एरस्त का साक है जो समो हार्जो आन हाल दर खरोन को फिर से दुर्बपाल पड़ते ही वेर खबर है फॉर द वेट वासन वाले दैलक, बोले फिर यहाँ पे के आदमी खाली जगह ले से एक बारे में दे एना फोर्सिटर अश्विन अनभीन बोले क्वालक दत है सोन इस प्रक में से हमर ही फलातन पसेरन, अब बोले इतना बड़का मुश्किल लग करी कि फिर यहाँ पे लोन ऐसे करी से, अब बोले अश्विन अधीन बोले कुछ रहा बोली से बाकी जोगी ये को चीज पूछी से रुके निकाल के बाहर कर दी से एंड दैट फिनिश ऑन ईयर लक में से एक बारे में मिनिस्ट्री स्टैनली सुरो पावीरो जो खरोन खरोन बलाई फन बॉस बहिर के है वो मेरकर करे ऑफ द स्टिक थिंग वार ओवर सम हार जो है थी नोक ऑन द सोक मुतन वार्डन, बोले बेचारे सब ऑन द सुख हो के, अब बोले लाइक के एज लेजर दिस वही के आदमी अन खसिन है ऑफ कॉम्प्लेक्स साकन खान सो से ने खफाल वर बे कॉन्फेर्सी heeft plaatsgevonden terwijl er rechtszaken gaande waren. Dus al zijn dit al afgerond, er kleven nog steeds problemen. To je baant hij zo'n harde kebetwa. Bronto, bhaiya, Bronto zit onder vier mensen, want hij, de lach van hem is er niet meer. Want hij moet bij de OM gaan, ook er op een zakje, bhaiya, kuketra paisa, fraudeer kadisega. Dus dat zijn de zaken. Op deko, bhaiya, Tulonjano, Suriname, je stroomke paisa na bharie, de kaarten met kelwaarda kare, bhaiya, aike काट देवे, बाकी द ग्रोस्ट वन बतालर इज द ओवरहेड इन सुरीनाम जो स्ट्रोम के पैसा ना भरे आशा जो स्ट्रोम के पैसा ना भरे आई के काट ना देवे है, बोले हम लोग काट स्ट्रोम हुए ना यहाँ पे, बाकी यहाँ बतावे है का सबसे बड़का वन बला वन बतालर जो ने लांटी है जो ने ईबीएस के स्ट्रोम खबर है के कर पैसे ना भरे सेफ कोमा फेफ फिर तक मिलियन एसर दी अख्तर स्टान थेगा ओवर हेट ईबीएस के भाई इस द ग्रोस्ट वन बला वन बतालर, और बोले एक बारे में अन मिनिस्टर अन बोले है interim van een natuurlijke hulpbronnen wat eigenlijk he bolle he gaan de wet staatsbegroting 2026 meer waren met vitalise ki ABS inmiddels 745 miljoen bolle he na paise volgens huurbedrag de achtste staan bij de ABS, of bolle huur benadrukken dat de overheid alles in de werk moet stellen om de aanzienlijke betalingsachterstand weg te werken. Zij deed daarbij ook een oproep aan haar collega minister van de Financiën de plichting te oesappen, bolle he, otra paisa, bolle na paise.
EBS भैया, और जब तू वहां पे 10 रुपया ना भरिए तो आई के बरौन पे आई गए लेके खट से काट दे भैया से इखल कर दे। और ऑफर है कि सिर्फ 100 मिलियन है ओके कोई कटवे ना करे है। तो ये बात है, तो हमारा बहन मुन नारायण भी आ गया है और वो है पथवानिका से दोस्तों। तो आपको भी हम स्वागत करते हैं। हम चलते हैं अपना और प्रोग्राम के बारे में। तो यहां बताए गए हैं दोस्तों, यहां बताए गए चलो जानो है फिनिसवेला में मदुरा के जनवरी में 3 जनवरी का अमेरिका वही घर में मचे पकड़ ले गया रहा तुलन जानो है। और फिनिसवेला में इतना काबल बवंडल चल रहेगा और बेफेंग हैगा, बहुत ढेर आदमी मर गए है, हेल्प खोजे है। और हम मदुरा खाली मांगे वहाँ पे निकले अब मदुरे के आदमी फिनिसवेला के मदुरा के ऊपर शोल कर सेगा कि 5 आदमी के जान से मरवा दे इसे फिनिसवेला में। मदुरा जब यहाँ पे रहा अब ओकर ऊपर रेक्साख बोली सेगा, बोले अब तू पैसा भर एक तो मदुरा प्रॉब्लम में अपरे है रेक्साख में और ओके और वही के देश के आदमी जाए के 5 थोप दे इसे। बोले हैगा 5 लंदन के ट्वीट जैसे सीफन 3 में ट्वीट जैसे 21 में आई काबले मदुरा अपद्राख दे इसेगा एक स्पेशल एक्शन फोर्सेस के कि 5 लंदन के डाक के माढ़ाड़ी से एक्सक्यूजर करवा इसेगा। यानी कि मदुरा अब एक और बात रही में सब साख लड़े हैं मदुरा तो और बड़का प्रॉब्लम में पड़ जाए भैया। और बोले मदुरा एंड फ्लोरस अब खपा के काराकास वो करोड़ के पकड़े रहा 3 जनवरी में अमेरिका से त्रुप होकर घर में से ले गए रहा एंड एक पर वैदा नाना डफरे ने साथ एन ओख फरा एंड से सीएस दिल फास इन न्यूयॉर्क वार बेडन हिस्ट्राफ साकन अफवाखतन से है वही जनवरी बेहद इससे फर्स्केने फुद रखतन अनस्कुल्लग प्लेट। तो यहाँ बताए कि बड़ी लंबा चौड़ा होकर बारे में निकले दोस्तों, लेकिन मदुरा के बारे में हमें इतने बताया। अब जब ओके एसक्यूसीसी के बारे में हुई तब तो और बड़का बातचीत हुई भैया। देखो गया ना छोड़ो हम जाए तरी नाफो के बारे में, नाफो भाई नाफो उक्रेन के सीफन तक मिलियार्ड फ्राई करी सेगा ट्वेन देर तक लंदन नाफो के इस अंकारा में बताया सेगा कि सीफन तक मिलियार्ड पैसा देगा उक्रेन के और का बोलेगा जो रुसलान से लड़िया होकर अंडरस्टैंड करे के फील फॉर द हेल्थ इस ऑल द यूरोपियन यूनियन ऑफ द लंदन ऑफ सोनलक बलोव मार उक्रेन से बन खनोते विल्डन उक्रेन verzekering van een gestage stroomsteun en een bedrag daarom vastleggen in een slotverklaring. Ortolonjane Madura banai zo een barca fabriek bhaiya jahan pe drone udawe hai aur drone udai udai fen Rusland mein hua ke ori rafinar de rei mein dak ke plata kar de ise aur aaj Venezuela jo itra barca export land raha तेल के ओके अपने ही आदमी को के तेल ना रह गए है भैया बेचे के आदमी लोन 30 बोतल पावे 15 बोतल पावे लंबा लंबा रही में खड़ा है। तो लोन जानो एक जमाना रहा सूरीनाम में भी हम लोग रही में खड़ा होते ली तेल कीने के उस समय पे तेल स्कार्स रहा सूरीनाम में भैया बहुत उसके रखे रही के बातचीत है। तो ये बातचीत है हमारे

make sure so anybody getting married, you know. तो यही चून से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार। इधर इन बाय बाय स्वाई स्वाई धर्मेन्द्र। इधर इन बाय बाय। और आपको बता देती है दोस्तों, हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यू टाउन स्ट्रैट नंबरो 25 और देन हाग शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मुख लिखाए थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं। www.fm.nl

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाए, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म, जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेक ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुम मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या?
1: क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला न पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप भुलाएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पे बहते हैं, और हम उर देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, जो अगर जो आप मुकेश की सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफ़ी जी के, रफ़ी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 515 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खदीर 55 का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: ना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा या उषा किरण फिल्म का नाम है। पतिता का ये फिल्म है, दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे, और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरी को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहती कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

और नाचो बेटी नाचो, ये सॉन्ग है मारी जोसी जमीर, और ये गीत है नाचो बेटी नाचो, और ये है भोजपुरी सॉन्ग। और इसके बाद हम एक और भोजपुरी सॉन्ग के ओर जा रहे हैं, मॉरिशस का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों। तो हमने सोचा कुछ सुनाए, अभी वो जा रहे भैया माया कर ले मेरी जान, सेगा भोजपुरी सॉन्ग है, और ये भी है का बोले है भैया मॉरिशस का, हो बूढ़ा मत करो बूढ़ा है शैतान, यहां पर लिखा भैया तो हम बोली बता दी, चलो सुना जाए।

0: और दोस्तों मजा कर ले मेरी जान, कुछ भोजपुरी सॉन्ग आज हम लोग आपको मॉरीशस की सुनाते हैं। मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होगा जवान, हो बूढ़ा मत करो, बूढ़ा है और वो है शैतान। यहाँ पर गीत के बाद भैया हम ना बोलेला, उसके बाद हम जाते हैं सोना नोयोन के कौन फुलवा कौन फुलवा, ये भी एक गीत है भोजपुरी का, आओ मिलकर सुना जाए।
1: अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो, अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा गीला

और कौनो फुलवा के ये गीत है दोस्तों, कुछ आज कुछ और आपको हम सुनाते हैं। सोना नयो गमत और कौन फुलवा का ये जोंग है जो मॉरिशस के लोग इस गीत को गाया है और बहुत खूबसूरत से गाया है। तो आज कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आज हम आप लोग को एक घंटा सुनाएंगे और उसके बाद दोस्तों कुछ और सॉन्ग आप लोग को हम सुनाए। तो हम चलते हैं लंगारों के ओर। लंगारो बॉयस है एगो भोजपुरी का और वो है भी मॉरिशस का। आओ सुना जाए ये क्या गाया है।

और हे लंगड़ों के बाद चीज को छोता है। हमारे दोस्तों आज कुछ भोजपुरी सॉन्ग मॉरिशियस को आपको हम सुनाते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। और तो आज हम आप लोग को भोजपुरी जोन से मलामाल करेंगे कि कमरवा के कुछ गीत है दोस्तों। और ये कमरवा में क्या क्या होता भैया आप खुद ही सुनिए। काम करवा

जी काम करवा, ये भोजपुरी सॉन्ग था मॉरिशियस का दोस्तों। अब हम चलते हैं एक भोजपुरी सॉन्ग, वो है हमारा भारत का, इंडिया का भोजपुरी सॉन्ग। अब मिलकर उस सुना जाए।

0: प्यार करे खाती जांग के मोटा भइल और सीना के चौड़ा भइल जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होके के चाहिए।
1: अपने आप के बहुत बड़ा आशिक समझ ले, चल तो साबित कर।
2: और ऐसा बड़ा नाचे ना माचिस, ये भी भोजपुरी है, ये है इंडिया का भोजपुरी दोस्तों। और आज हम आप लोग को श्री भोजपुरी ही एक घंटा को सुनाएंगे, और उसके बीच में हम जा रहे फिर एक भोजपुरी जो मॉरिशियस का है दोस्तों। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं।

हेलो कमरिया फुला के, और क्या क्या ये गीत को ये आदमी कितने खूबसूरत के गाकर सुनाए हैं। आओ ये गीत को और सुना जाए।

और माटी बड़ा अलमोल है दोस्तों, और ये सब गीत हमने कभी सुना नहीं है, तो आज मिलकर सुना जा

और मुरिका के कुछ सॉन्ग है दोस्तों, यहां से आपको हम इंडिया का कुछ भोजपुरी सुनाएंगे। पवन सिंह काजल रघवानी का, प्रियंका ने इसमें काम किया है, जोंग फान ने छलकाता हमरो जवनिया।

चल चिखले जवानी, तो जवानी के बाद हम फिर एक सॉन्ग लेकर अभी आएंगी दोस्तों, और वो सॉन्ग क्या है, जोश में आके होश मत गवाइयो।

उस में आके और जोश में आके और आगे चला हो भोजपुरी सॉन्ग। और ये है हमारा मॉरिशियस का ये गीत है जो राजकमल चिंता मुनि ने गाया है हमारे दोस्तों। यहां से और आगे हम चलते हैं राजकमल की ओर, फूली गिरी।

बस दोस्तों रानी बनावे तो के सहरिया में, और रानी बनावे सहरिया में भोजपुरी जों का ये गीत है।

तेरी प्यार में क्या क्या होता है, अरिजीत सिंह, निकिता बच्चन ने, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और अपना प्रोग्राम को लेकर आगे और कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का प्रोग्राम है सुनाना मेरा काम, बस सुनते जाओ इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इस खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है ना यारो, दूर जाने से बड़ी तकलीफ होता है, ये हम नहीं कहता है, ये दिल के आवाज़ कहते हैं कि अब जिसके जिए में आई वही प्यार रोशनी, अब जिसके ये मन आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सारे आम रख दिया है। और चलते हैं मोहब्बत इनायत करम देखती है, और फिल्म के नाम है बहारे आने तक, अनुराधा पौलवार और पंकज उदास क्या कहते हैं।

मोहब्बत इनायत कर्म देखते हैं। आओ जा आप लोग जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम जोनी नंबर वन का है और कहते हैं फिर वही दिल की वो फिर वही दिल की गुजारिश फिर वही उनका गुरूर फिर वही उनकी शरारत फिर वही मेरी कसूर दोस्तों कि तेरी खामोशी चला देती है इस दिल की तमन्नाओं को तेरी खामोशी जला देती है इस दिल की तमन्नाओं को बाकी सारी बातें अच्छी हैं तेरे तस्वीर में। हम चलते हैं मेरे सवाल का जैजाना और का ये गीत है आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों यहाँ से मेरे सवाल का एक गीत हमने आप सबको सुनाए हैं, प्यार भरी गीतों की। और बाहर प्रोग्राम हमारा यहाँ से चलते है और आगे को तो प्यार भरी बातें तो करना हमारा ही काम है यारो, कि काश उसे चाहने के अरमान न होता, काश उसे चाहने की अरमान नहीं होता, मैं होश में

दिल से हमको या फिर कोई पत्थर दिल इंसान न होता। तो हम चलते हैं, मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरी साजन। और फिल्म के नाम है सलामी अलकायग्निक कुमार शानू।

और मिले तुमसे बिछड़ने के और मेरे साजन दुआ करना। अलका याग्निक का ये गाया हुआ सॉन्ग है कि दोस्तों कि अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता, अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता तो खुदा होता तो तेरे दिल होता। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है। ये तो सच बात है दोस्तों, अगर दिल है तो दिल टूटता भी है, और अगर दिल है तो दिल रोता भी है, और अगर दिल है तो दिल प्यार भी करता है। मुझे रिश्तों के लम्हे कटारों से क्या मतलब, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब। और कोई दिल से हो मेरे तो एक शख्स की काफी है। तो हम चलते हैं कि रब्बा क्या जानते हैं, रब्बा तो सब कुछ जानते हैं। और आओ सुना जाए कि यहां पर मिशन मजनू क्या कहते हैं।

0: कबूल है
1: और कबूल हो गया है, और अगर कबूल हो गया है तो जान ले सब तैयार ठीक ठाक हो गया है। लेकिन कभी कभी किसी के प्यार जो है वो बहुत दूर रहते हैं दोस्तों, और जगत दूर दूर रहते हैं तो दिल में बहुत सा दर्द होता है, सोच होता है, रात को लोग सो नहीं पाते हैं कि कहते हैं कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है, टूट कर सारी दुनिया के रस्मों रिवाज को तुझसे अपना बनाने को जी चाहता है। तो दूरी के मतलब ये है दोस्तों कि तेरे वजूद के खुशबू बस है मेरी सांसों में, तेरी वजूद के खुशबू बस है मेरी सांसों में, ये और बात है कि नजर से दूर रहते हैं तो हम चलते हैं, ओ सनम ओ हमारी सनम ओ हमारी सनम, उदित नारायण की ओर हम चलते हैं और पामेला जैन की ओर, जिसमें बॉबी देओल और लारा दत्ता ने काम किए हैं कि ओ सनम मेरा सनम।

दोस्तों और आश्रम में क्या क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा हो चुका है जो लोग प्यार में धोखा देते हैं। दिस प्रोग्राम भैया इस प्रोग्राम जो है ये सिर्फ लवर्स के लिए है और प्यार भरी गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारा है और उसमें कभी कभी लोग धोखा भी दे देते हैं, बेवफाई भी करते हैं, तो हम भी उस लोग को याद करते हैं जो दिल तोड़ दिया है या तोड़ते हैं और जो सोचते हैं दिल तोड़ने को कि तेरे ख्याल से दिल से मिटाया नहीं अभी, तेरी ख्याल दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको बुलाया नहीं अभी, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, होने लगे हो कुछ कुछ बेवफा से तुम, हम चलते हैं तेरे नाम धोखा रख दुन नाराज हो गए हो क्या, तेरा नाम धोखा रख दू नाराज हो गए है क्या। अरिजीत सिंह की ओर है।

0: इश्क थी मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: और तेरा नाम धोखा रख दू और तुम नाराज हो गया है क्या? कि कहते हैं हमने ना मोहब्बत मिली, हमें ना मोहब्बत मिली, और हमें ना मोहब्बत मिली ना प्यार मिला, हमको जो भी मिला बेवफा यार मिला। अपने तो बन गई तमाशा जिंदगी, हर कोई मकसद का तलगार मिला। कि कहते हैं दोस्तों प्यार में धोखा होता है, तूने ही लगा दिया इल्जाम इस बेवफाई, अदालत भी तेरे ही, गवाह भी तू ही थी। तो हमारे यारो, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं, और ये गीत है प्यार का दोस्तों, प्यार का सॉन्ग है, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला।
2: जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझसे शादी करेगी?
3: हाँ।
2: प्रॉमिस?
3: प्रॉमिस।
2: तो फिर मैं अभी आया।
3: उफ़ो, ये फिर कहाँ चला गया?

0: क्या कर रही हो तुम? हाँ याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था।
1: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है।

और बेदर्जी से प्यार का सहारा ना मिला कि वो तारों की तरह, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तनहा सफर करते रहे। वो तो बीते वक्त उम्मीद आना ना था, वो तो बीते वक्त उन्हें आना था। हम यूं ही सारी रात करवते बदलते ही रहे। और यहाँ से एक गीत और हम आप लोग को सुनाने जाते हैं, और वो गीत क्या है, अब नाम मोहब्बत के लेन तो आया है गुलाम। उदित नारायण अलका यांगनी फिल्म के नाम है गुलाम। दोस्तों गुलाम फिल्म का नाम है। एक लम्हे के लिए मेरा नजरों के सामने आया, एक मुद्दत से माने खुद को आईने में नहीं देखा।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशअप द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशअप। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिल्बा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलिया भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीने बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा शिवपॉल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's this smart?
1: Where's what?
0: What's this here, so? Oh. Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You're sitting? I had an emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिपोह की आवाज़ में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा, हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक को सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

अभी आप सुन रहे थे उमर जी की आवाज़ में मेरा साया साथ होगा। उमर और निसाम जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं नदीम खान जी और नदीम खान आपको सुनाने वाले हैं जिंदगी चार दिन की ना रूठो सनम।

जिंदगी चार दिन की, ना रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन। ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज़ में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए, अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा, वादिका रामसुकुल और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

स्टीफन बैताली और वादिका रामसुकुल आपको सुनाने वाले थे मैं नदिया की धारा बाहे तेरी किनारा। धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका रामसुकुल के साथ में मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोरथ जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशो भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। दविंदर सिंह शिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के हैं।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह शिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मैदली के साथ।

इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचंद्रन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे, यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

आकाश बी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये मेडली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जॉयस शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

रुबिन अधीन जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं आजारे परदेसी।

मैं तो कब से खड़ी, इस बार भी आप सुन रहे थे सविता सिंह जी की आवाज़ में कविता राम की सुन जी प्रोग्राम में आ रहे हैं कैचिंग माउकदी।

सविता सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दुपट्टा। मैं प्यार का दीवाना रायन मनोरथ प्रोग्राम में आ रहे हैं।

रायन मनोरथ जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, मैं शॉप अभी आप सुन रहे थे। दुबराज प्रसाद और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं

जल्दी केवड़िया खोल दुबराज प्रसाद और सविता सिंह जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। संजय शिवराम और वादिका रामसुकुल जी आपको सुनाने वाले हैं।

वादिकाराम शुक्ल और सरस साहब में देखे संजय शिवराम। जी हाँ, संजय शिवराम और वादिका राम शुक्ल जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। संदेश सिद्दीन और सविता सिंह आपको सुनाने वाले हैं सजनवा।

0: सज्जन, अभी आप सुन रहे थे संदेश दिन और सविता सिंह जी की आवाज में रानी दत्ता जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: Like that.

रानी दत्तई जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये चटनी सॉन्ग। मोर चिरैया तोर चिरैया, आदित्य राम सुकुल जी आपको सुनाने वाले हैं।

आदित्य राम सुकुल जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दो चिरैया मोर चिरैया। सोनिया सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, शेक मी वेस्ट।

0: सोनिया सिंह की आवाज में भी आप सुन रहे थे शेक मे वेस्ट, सूते ना देवे सेलेक्टा जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।
1: Holland's finest.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर एंतबलाइज त्रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग 24 घंटे रोजाना लगातार दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम प्रोग्राम को सुन सकते हो। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज अंकल्स एंड सीकर बदंते हैं। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार, तो हो सकता है कि आपका धंधा भी फटाफट चल पड़ेगा, या तो आपका इवेंट हो जो ना हाउसफुल हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हैं, सुनते रहते हैं। डिफाइन सिस्टम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु, उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यार, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल अटेंडेंस कंटोर यूर फन मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 यूर मॉर्निंग्स टू 5 यूर मिडिल्स ऑफ 07-362-2247, दफ्तर कतार का नंबर और स्टूडियो कतार का नंबर 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना है, सॉफ्ट टू ऑल ऑफ यू इसके लिए, और हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है हमारे फुल टीम की तरफ से कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का यानी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने उसी तक पर। आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। इवन फन हार्ट वेलकम एंड आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को हमारे दूसरा अध्याय के तरफ, हमारे पॉपुलर संग नामी संगीत का, और वो तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हॉलैंड और कुछ सुरीनाम देश के कलाकार आप सुनेंगे। ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, इंडियन पॉप म्यूजिक फ्रॉम सुरीनाम एंड हॉलैंड। तो अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का, जिनका पैदाइश हुआ है पाकिस्तान में और फनम से नीघंती दयार वोंट है इन नीदरलैंड। बखन बै द म्यूजिक फरमासी स्ट्रेंजर्स और सभी बैंड में हमारे गा चुके हैं ये महान गायक, और कितने शोज भी तकरीबन द्रीम फेरत यार से जब से वो मैदान में उतरा है कितने शोज भी दे चुका है। आजकल तो जबरदस्त पाकिस्तान खाना भी पकाता है, कैटरिंग करता है कश्मीर, और ये जबरदस्त गायक एक महीना हुआ है ये अति सुंदर सॉन्ग को रिलीज किया है। चलो आज चलते हैं हम मैस्ट्रो बॉबी जेकब के जबरदस्त आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम। शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ है भाईजान, किया जबरदस्त गाया है, ब्लेसिंग्स। चलो आज चलते हैं हम।

गाया है चलो आज चलते हैं हम। मशहूर गायक हमारे ऑल इंडीज का मैस्ट्रो बॉबी याकोब। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश में कितने शोज दिए हैं, हॉलैंडिस का जबरदस्त गायक है। इनका पैदाइश हुआ है भारत देश में और 1983 में जब ये आया था बाबला के साथ, बाबला जी कांचन जी के साथ शो देने यहाँ हॉलैंड में, तो हम लोगों के साथ ये महान गायक का मुलाकात हुआ। 1986 में आया हॉलैंड देश में और तब से शुरुआत किया स्ट्रिंजर्स म्यूजिक फॉर्मेशन में और तब से कितने बैंड्स में गा चुके हैं। उन्हीं के मशहूर आवाज में आप सुनेंगे शिखर कुमार जी के वॉइस में

अति सुंदर बयान छूकर मेरे मन को किया तूने किया इशारा। महान गायक जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का खबर इन इंडिया द वन एंड ओनली मैस्ट्रो शेखर कुमार। एक और जबरदस्त गाने वाली आई डी आर 70-80 द नाचतगाल फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड हॉलैंड। मशहूर गाने वाली उस जमाने का वो मिस हार नो स्टेट्स द ग्रेट अबीदा को राइशा रामजान जी को लाते हैं प्रोग्राम में और उन्हीं के मधुर और ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे क्लासिकर तुम्हें अपना बनाने की उन्हीं के स्टाइल में।

Shabashi, Georges Ganewali uit de jaren 70-80, Rindiska, The Nightingale, Abida Ramjani. Ik hou Georges te gaiken, doet pijn, hè. Abida bhi, jawan, kya baat apni jawani, hè, in haar glorietijd ook, chhodke hum log chal gaye. Aur ek Georges gaik jo मेरे ख्याल से 2 साल होने वाला है, हम लोगों को भी छोड़ के चल गए और उन्हीं के यादें रह गए हैं और वही यादें मैं आप श्रोताओं को सुनाते रहता हूँ। जबरदस्त गायक अदियार 80-90 मैस्ट्रो शहीद वाहिद हुसैन जी के ब्यूटीफुल आवाज़ में आप सुनेंगे From the album Sweet Melodies with Mastana 1986. Kya Jabardast Gayak Tha Ye Mahan Gaane Wala and Haikon Ook Heel Veel Meer Aur Ek Jabardast Drummer Tha and Speeled Ook Alle Basses Instrumenten Natuurlijk. Milke Sunte Hai The Great Shaheed Wahid Hussain Ke Yaad Mein Tauba-e-Nazari.

मैस्ट्रो हफीज खान वाहिद हुसैन के साज पर ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। आवाज था मैस्ट्रो शहीद वाहिद हुसैन जी का। यार वक्त हो गया है ना कुछ शेर्स हो जाए हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। कुछ दोस्ती के बारे में शेर्स भेजा है यारों का यार भी जो जिगरी दोस्त है भाई भूपेंद्र जी। कुछ ताजे ताजे शेर्स अर्ज किया है यारो, ये दोस्ती चिराग है इसे जलाया रखना, ये दोस्ती तो चिराग है इसे जलाया रखना, ये दोस्ती गुल है इसे खिलाया रखना। हम रहे ना रहे इस जहां में यारो, हम रहे ना रहे इस जहां में, बस हमारी याद दिल में बसाए रखना। क्या बात है। कभी जो हम पे जान दिया करते थे, कभी जो हम पे जान दिया करते थे, जो कहते थे वो मान लिया करते थे, कल अनजान बनकर, कल अनजान बनकर पास से गुजरे गए वो, यो जो दूर से पहचान लिया करते थे। सब कुछ है मेरे पास बस दिल की दवा नहीं, सब कुछ तो है मेरे पास बस दिल की दवा नहीं, दूर वो मुझसे है पर उसे खफा नहीं, दूर वो मुझसे है पर मैं उससे खफा नहीं, मालूम है अब भी प्यार करती है वो मुझसे, वो थोड़ा जिद्दी है, वो तो थोड़ा जिद्दी है लेकिन बेवफा नहीं है। थाम लो मुझे बेहोशी छा रही है, थाम लो मुझे यारो मुझे तो बेहोशी छा रही है, पलकों पे आंसू लेके तेरी याद आ रही है, प्यार तो बेपना मेरे दिल ने किया है तुमसे, प्यार तो बेपना मेरे दिल ने किया है तुमसे, फिर सजा क्यों मेरी नजरों पा रही है। मेरे स्टेटस का शौक रखने वालों, मेरे स्टेटस का शौक रखने वालों, मुझे कभी आदत ना बना लेना, मैं वो एक लहर हूं, मैं तो वो एक लहर हूं जो रोक जाने की चाहत, जो रुक जाने की चाहत नहीं रखता। तो था कुछ शेर्स आगे के प्रोग्राम में, कुछ कोशिश करूंगा और सुनाने को। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक और जबरदस्त गायक ऑल्सो बोर्न इन पाकिस्तान और तकरीबन 1970 से गाता चला आया और इतने नाम कमाया सूरीनाम देश हॉलैंड देश से, और गाते गाते हम लोगों को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। मैस्ट्रो नदीम खान के ब्यूटीफुल आवाज़ में खिजा के फूल।

महान गायक मैस्त्रो नदीम खान जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एक और मशहूर गाने वाली आईडियार तख्तख एम्स्टरडेम के रहने वाली डिग्रेट निशा कृष्णा संतू जी के ब्यूटीफुल आवाज में, जो उस जमाने में म्यूजिक फरमासी पंदेरों में गाती थी, और वो सुनाती है त्राफासी के साज और संगीत पर थारी चांदनी गीता दत्त जी का गाया हुआ ये ब्यूटीफुल ओल्ड सॉन्ग।

Beautiful song, wonderful song composed by Maestro Harold Beervliet. Arsunadi Apsabiko Nisha Krishna Santu Tari Chandini. अगला बयान एक और जबरदस्त गायक uit de jaren 70, 80. The man with the most beautiful voice. The man with the golden voice. क्योंकि ये तलत महमूद जी के गाने ज्यादा से ज्यादा गाता था और ये कुछ रफी साहब जी के आवाज में कुछ निकाला है अपने आवाज में. Maestro Wim Damri, यकीन कर लो, रफी साहब जी के गाया हुआ ये अति सुंदर बयान विम डमरी के आवाज में.

अच्छे ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को, मशहूर गाने वाली फ्रॉम द 70s 80s श्री वेम दमरी जी के ब्यूटीफुल आवाज में। अगला बयान एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है, डुएट है, लाइव रिकॉर्डिंग, और सुनाने को जा रहे हैं उस जमाने के यानी यार 70-80 का मशहूर गाने वाला मैस्ट्रो मिशेल लक्ष्मण साथ दे रही है मशहूर गाने वाली उस जमाने की श्री इंदिरा राम चरण जी मेर कैंटाउस यानी जो औरतिया गाइस है सिलवा के माए वाला गनवा मशहूर गाने वाली और गाने वाला दो ग्रेट लेजेंड्स माइकल लक्ष्मण एंड इंदिरा रामचरण मस्ताना एंड मेमोरी आउट 1984।

अति सुंदर बयान श्रोताओं के सीमा में पेश किया गया और सुनाने वाले थे मैस्त्रो मिशेल लक्ष्मण और इंद्रा रामचरण जी uit 1954 84 live recording van Mastana Orchestra. तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टेज टून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. आफ्टर

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। नतीलिक बुलाइस्त्रे फिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को भी फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतीलिक हेल हार्टलिक डंक। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से जरूरी खबरें या इश्तिहारे, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, शोज वगैरह इवेंट वगैरह आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं ना, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है कि चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा ना। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं और ये भी वर्ल्ड वाइड। किफ़ायत से नाम सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हर देश भर में नहीं मिलेगा। आएगा रो आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार कर सकते हैं फाफ मांडा टॉट फ्राइडा फन नई खर्स मॉर्गन टॉट फाइव मिडा अब द फॉलोंडे टेलीफोन नंबर्स दफ्तर कतार का नंबर 07362247 और स्टूडियो कतार का नंबर 07362207। जो भी रेडियो का काम हो दें कन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो यू बेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, रिक्लाम बनाते रहना और इसके लिए हमारे फूल टीम के तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद क्योंकि आप है तो हम भी है। रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार कर सकते हैं अपने 07362247 या तो आप तार करें 07362247 पर स्टूडियो कतार का नंबर। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को दूसरा अध्याय हमारे सरनामी संगीत और वो हमेशा की तरह कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक आप सुनेंगे। तो प्रोग्राम में लेकर आते हैं हमारे हॉलैंडीज का एक जबरदस्त गायक जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ है एंड फन ऑफ 1983 बखान बैड हाक्स पॉप फॉर्मेसी द स्ट्रेंजर्स और अभी तक उसी में गाता है और कितने बैंड्स में शोज दे चुका है सुरनाम देश और कितने देशों में जा जाकर अपना शोज भी दे चुका है। अ ग्रेट सिंगर द ग्रेट बॉबी याकब जी का बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुनेंगे कि वादा दिन आया। इट्स अ क्रिसमस सॉन्ग।

दिन है आया ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को गाने वाला हॉलैंड देश का जबरदस्त गायक बॉबी याकोब। अगला बयान एक और महान गायक है हमारे सूरीनाम देश का मिस्टर के कवीश कालका जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे दिल दे दिया है। A great song covered by maestro Kavish Kalka, music by brother Ravish Kalka.

दिल दे दिया है मिस्टर केके का स्टाइल में, और संगीत दिया है उनका भाई रवीश कालका एर का बीट्स। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली है हमारे सूरीनाम देश का, निशा मदारन कॉफरेट सॉन्ग है, और अपने ही अंदाज में ये बहुत ही मुश्किल सॉन्ग द ग्रेट श्रेया घोषाल जी का गाया हुआ नगमा आप सुनेंगे, तुम बिन बाय निशा मदारन।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुरीनाम देश का जबरदस्त गाने वाली डेग्रेट निशा मधारन जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये कवर्ड सॉन्ग आप सुना तुम बिन ओरिजिनल बाय डेग्रेट श्रेया घोषाल जी रिकॉर्ड जबरदस्त सॉन्ग आप श्रोताओं की सेवा में मैं रख चुका हूँ प्लेयर में और सुनाने को जा रहे हैं एक और महान गायक हमारे हॉलैंडेश का जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ और कितने बार सुरीनाम देश में अपना शो देने गया और अभी तक लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और रोज़ाना रेडियो पर इनके नगमे आप सुन सकते हैं हमारे सुरीनाम देश में। मैस्ट्रो नदीम खान जी का सुपरहिट सॉन्ग कंपोज बाय द ब्रदर्स ज्वालांत श्याम लक्ष्मण। रीअरेंजमेंट बाय द ब्रदर्स लक्ष्मण।

सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया पिछली याद भुला दो तिस्वाल मुइलक मार लॉस लात नहीं तो प्रॉब्लम में आप चले जाएंगे दिस प्रोबेर सो फिर मोखलक लॉस लात दैट सेक्ट दैट नंबर मैस्ट्रो नदीम खान Rearrangement by the brothers Shyam and Jwala Lakshman. De covertje wat je zong op zwing is een leuke duet uit de eerste CD van maestro Shahid Bahid Hussein. Indian Diamonds gezaaid per op zwing Shahid Bahid Hussein. Staat der hier hij. उस जमाने का मशहूर गाने वाली ऐद यार 70-80 द दाम मेट एन मूय स्टेम एन दी ओंस हेल फ्रूग हेफ्ट फरलाते एन नतुरलिक शहीद ओक बेदे जैन आल वेलन द ग्रेट अबिदा रामजान आपका चेहरा

0: चेहरा सुभान अल्लाह।
1: क्या बात है, होता है यारो लाइफ रिकॉर्डिंग है ना, तो श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया दो मशहूर गाने वाले जो मरहूम हो चुके हैं, द ग्रेट शहीद वाहिद हुसैन एंड अबिदा रामजान, इंडियन डायमंड्स के ब्यूटीफुल सीडी से निकाला हूँ, एंड इस्ट सेडे ओक फॉन शहीद वाहिद हुसैन। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान मशहूर गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का द चटनी क्वीन, बिल्कुल नया सॉन्ग चलत मुसाफिर, मशहूर गाने वाली अश्नी माता दिन जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान स्पेशल।

beautiful song, Chelet Musafir, covered by the Chutney Queen from Rotterdam, Ashni Matadin. एक बिल्कुल नया नगमा है, कुछ 3 महीने हुए है निकाली है। रिकॉर्ड के जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, क्लोज टू माय हार्ट, बचपन से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा मेरे जिगरी दोस्त देव नारायण राम बरन जी का सुपुत्र है और वो भी एक बेहतरीन गायक था हमारे सूरीनाम देश में। नया जमाना ऑर्केस्ट्रा में गाता था और बाद में द इंडियन गार्ड्स खाद कुछ सालों तक गाया। उन्हीं का सुपुत्र द बैंड लीडर फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मासी द स्टार्स जेमी रामबरन जी को लाते हैं प्रोग्राम में। मेयर बकैंतल्स में मिस्टर बल्ले बल्ले कुछ दोस्तों के साथ ये अति सुंदर बयान को तैयार किया है। देर थी तरीका कुछ दिन हुए है निकाला है, लेकिन कुछ दोस्तों में जब कुछ होते ना, कुछ अंडमंड हो जाते हैं ना, तो ऐसा ऐसा नगमे तैयार होते हैं। लेट स्पेशल ऑफ द टेक्स्ट खवाद नंबर बाय जेमी रामबरन एंसन फ्रेंड शारोन राफनबर्ग रायन अब्दुल असीज अंत फारिस बरसाती। मिलके सुनते हैं

Jimmy Ramburn and Friends, Dirty Tarika. तो हमारे यार कुछ शेर्स हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए, कुछ दोस्ती के बारे में शेर्स भेजा है ताजे ताजे भाई भूपेंद्र जी। अर्ज किया है यारों की दर्द की, हर एक दर्द से गुजर गया हूं मैं, दर्द की हर एक हद से गुजर गया हूं मैं, फिर ना कभी सिमटूंगा यूं बिखर गया हूं मैं, मौत भी नहीं आती अब तो रूह के निकलने से भी, मौत भी नहीं आती अब तो रूह के निकलने से भी, सांस मुझ में बाकी है फिर भी मर गए हूँ मैं। साथ देना का वादा किया था, साथ देने का वादा किया था, सिकवा सहने का वादा किया था, अगर वो हमारे बिना खुश है तो ये ही सही, कोई क्योंकि हमें तो उन्हें सदा खुश रखने का वादा किया था। दिल में तमन्नाओं को दबाना सीख लिया, गम को आंखों की छिपाना, गम को आंखों में छिपाना सीख लिया, मेरे चेहरे से कहीं कोई बात जाहिर ना हो, मेरे चेहरे से कहीं कोई बात जाहिर ना हो, दबा के होंठों को हमने मुस्कुराना भी सीख लिया। दूर जाकर भी हम दूर जा ना सकेंगे, कितना रोएंगे हम बता ना सकेंगे, गम इसका नहीं कि आप मिल ना सकोगे, गम इसका नहीं कि आप मिल ना सकोगे, दर्द इस बात का होगा कि हम आपको भुला ना सकेंगे। यूं तो सदमों में भी हंस लेता था मैं, आज क्यों बेवजह रोने लगा हम, आज क्यों बेवजह रोने लगा हूं मैं, बरसों से हथेलियां खाली ही रही मेरी, बरसों से हथेलियां खाली ही रही मेरी, फिर आज क्यों लगा सब खोने लगा हूं मैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, शायद मेरी तकदीर में ही चाहत नहीं, मेरी किस्मत को लिखकर तो ऊपर वाला भी मुकर गया होगा, मेरी किस्मत को लिखकर तो ऊपर वाला भी मुकर गया होगा, पूछा तो बोला ये मेरी लिखावत ही नहीं। ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक है हमारे हॉलैंडीज का, इनका पैदा हुआ है भारत देश मुंबई में, और फनाफ नीह दिन ससंतख्तख is hij al vast in Nederland. Ik heb hem leren kennen in 1982... toen hij met Babla en Kantjen hier voor zijn concert was. En zo lang zijn wij dan vrienden. Hè? Jaren gezongen voor de Haagse topformatie The Strangers, Diwana Leke Aya, Shekhar Kumar, music by The Indian Express. It's a live recording.

ऐसे मशहूर गायक हमारे हॉलैंडीज का डिग्रेड शेखर कुमार। अगला बयान एक और बड़ी गाने वाली हमारे हॉलैंडीज का द क्वीन ऑफ मेलोडी फ्रॉम हॉलैंड नाइटिंगेल फ्रॉम यूरोप भी लोग बोलते हैं, क्या क्या टाइटल नहीं मिल चुकी है ये महान हमारे गाने वाली को। और हॉलैंड देश का शान है। लता मंगेशकर जी के बहुत ही ढेर नगमे गा चुकी है और जितनी खूबी से ये गा लेती है मखौख सहवर्द, लेकिन आज सुनाने वाली है अलका याग्निक जी का गाया हुआ सुपरहिट सॉन्ग तीन यार खलेद है उसे दित नेमोर खुसोंग इन थिएटर तालिया इन सुरीनाम अंडर लीडिंग फॉन रियाज अहमद अली मेट सैन यादगार ऑर्केस्ट्रा। मिलके सुनते हैं गली में आज चांद निकला द ग्रेट मधु लाल बहादुर सिंह।

0: Zodat Talia Madhuri.
1: Shabash, shabash, shabash, beautiful song सुनाई आप सभी को हमारे हॉलैंडीज़ का मशहूर गाने वाली द नाइटिंगेल मधुलाल बहादुर सिंह लाइव रिकॉर्डिंग विद यादगार ऑर्केस्ट्रा 2014. मेरे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का मेरे सरनामी संगीत का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया. अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत.

0: फोन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। नतीलिखित बलाइस्तरफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिलिक वर्क्स बॉयज अंत गर्ल्स एंड बदंत सो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है कि आपके धंधा फटाफट चल पड़ेगा। ये बात मैं आप सोता हूँ से इसलिए कह रहा हूँ यारो की, क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने उसी तक फेर तक। दफ्तर का तार का नंबर, स्टूडियो का तार का नंबर है 9 7 3 2 6 2 7 7। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इवेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, जोर तोड़ से और थोड़ा जोर तोड़ से चर्चा करते रहना हम लोगों के बारे में, और इसके लिए आप सभी को तह दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी कोशिश करें बनाने को। सभी जानकारी इसके बारे में इनफरबंध में हेत लित वार्डन फनफाउन हिंदुस्तानी रेडियो मुझे आप कंटोर बैल 9 7 3 5 6 2 6 4 तक पर। तो जरूर आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और रो को भी बनाए। तो एक ही दम लेकर चलते हैं, और जैसे मैं कह चुका था लास्ट उर्च फॉर प्रोग्राम एस मेस्टा द न्यू बॉलीवुड फिल्म नंबर्स हेडनदास म्यूजिक, और मैं पेश करने वाला हूँ इस जमाने का एक महान कलाकार, रिमेंबर द नेम मैस्ट्रो विशाल मिश्रा, जो बहुत ही जबरदस्त गायक है, म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिक कंपोजर है और गाना भी खुद लिखता है। तो उसी के साथ और संगीत पर उसी का लिखा हुआ गाया हुआ नगमा आप सुनेंगे, तू भी सताया जाएगा, क्या बात है। ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय मैस्ट्रो विशाल मिश्रा।
1: ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, फरेबी है, सब झूठ बताता है।

0: जब तक जी रही हूं ये दुआ करती हूं तू हर रोज मरे मैं जिस तरह मरती हूं।
1: दिल को छू लेने वाला बयान तू भी सताया जाएगा। A great composing singing by maestro Vishal Mishra और अल्फा से भी था ये maestro Vishal Mishra जी का। अगला बयान गुलाबी आँखियाँ क्या बात है। म्यूजिक बाय मीत ब्रोस अल्फाजे है कुमार जी का और आवाजे है मैस्त्रो जुबीन नौटियाल शशि होलकर और द ग्रेट मीत ब्रोस जी का। मिलके सुनते हैं स्पेशल।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है गुलाबी अखिया, इस जमाने का नया सॉन्ग है, आप सुना बाय जुबी नौटियाल, शशि होलकर और मीत ब्रोस। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, द क्वीन ऑफ मेलोडी इस जमाने का एंड द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल म्यूजिक भारत देश का इस जमाने का, दो जबरदस्त गाने वालियां हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इस जमाने का, जिसपे मेरा नाम से गर्व है, द क्वीन ऑफ मेलोडी श्रेया घोषाल और द क्वीन ऑफ द इंडियन पॉप म्यूजिक सुनिधि चौहान, टुगेदर इन वन ग्रेट सॉन्ग छैला फ्रॉम द मूवी भूमि, मिलके सुनते हैं, कंपोज एंड प्रोड्यूस बाय द ब्रदर्स सलीम सुलेमान और अल्फाज है श्रद्धा पंडित जी का, स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

0: Beautiful composing by the brothers Salim Suleiman और आवाजें थे हमारे दो मशहूर गाने वाले बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का श्रिया घोषाल और सुनिधि चौहान। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है चल कुड़िए, महान गायक इस जमाने का मैस्ट्रो इन द भांगड़ा सॉन्ग्स द ग्रेट दिलजीत दोसंज जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। साथ दे रही है मलकाए हुस्न द ग्रेट अलिया भट्ट, म्यूजिक डायरेक्टर मनप्रीत सिंह के साथ पर, और अल्फाजे है हरमानजीत सिंह जी का। क्या बात है, इट्स भांगड़ा टाइम फॉर यूली एन अतील के एक जबरदस्त बेहत के स्टाइल में ये भांगड़ा बनाया गया है। मिल के सुनते हैं ओक इन द भांगड़ा लैंग्वेज रिच पंजाबी में।
1: मेरी राखी पहनता है ना तू, तो मेरी प्रोटेक्शन में है, तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी।

0: Cherry. ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया दिलजीत दोसंझ के ब्यूटीफुल आवाज में, साथ दे रही थी अभिनेत्री दिग्विजय आलिया भट्ट जी। आज शरा बेला अति सुंदर बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को दिग्विजय श्रेया गोशाल जी, म्यूजिक अरेंज बाय शामिक चक्रवर्ती।
1: मौन रागनी अनेक प्रार्थना गान हुए छे।
2: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अभी ना जाओ छोड़कर, होठों से छू लो तुम, हाथ जाने की जिद ना करो, अमर का छे

जी हाँ यारो, कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज क्या है यारो, इस मोहब्बत की किताब के दो ही सबक याद हुए, कुछ तुम जैसे आबाद हुए, कुछ हम जैसे बर्बाद हुए। लोग मुझसे भी कह देते हैं अक्सर दुआ के लिए, लोग मुझसे कह देते हैं अक्सर दुआ के लिए, यानी कि मेरे लिए दुआ कीजिए। देखो देखो किस कदर खुदा ने मेरे ऐब छुपा रखे हैं। कितना हसी मौसम था जब वो मेरे सामने रहती थी, कितना हसीन मौसम था जब वो मेरे सामने रहती थी, अब वो ख्वाबों में मिल जाए ऐसे भी हालात कहाँ। जिंदगी तो वही थी जो मैंने तेरे साथ गुजारी थी, अब तो सिर्फ मैं जीने का रसम अदा कर रहा हूं। कुछ पाना है तो मेहनत करो भैया, कुछ पाना है तो मेहनत करो दीदिया, किस्मत की रोटी, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो, समझ सको तो समझो इन दिल जलों के जज्बात को, समझ सको तो समझो इन दिल जलों के जज्बात को, लगता है मौसम ने इनकी सखम फिर से हरे कर दिए। तो ये था कुछ शेर्स आखिरी आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं यारो आप सभी को, और इस बार कुछ सुनाते हैं भैया दिलजीत दोशंत बादशाह जी के साथ मिलके, म्यूजिक कंपोज बाय राज रंजोध, और गाने वाले हैं दो महान सिंगर्स दिलजीत और एफटी बादशाह। ब्यूटीफुल सॉन्ग मिलके सुनते हैं भगेरे गन में, मच्छा खोजल जाए। लाइव रिकॉर्डिंग है यारो, होता है लाइव ब्रॉडकास्टिंग में ये सब तो कभी कभी हो जाता है। नहीं ना।

फनहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फनहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

में जल दे रहे, क्या हुआ ये मुझको, क्या हुआ है। और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहते हैं।

लाखों है निगाहों में जिंदगी के राहों में पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये एक मोहब्बत भरी और ये गीत है एक बार ना एक बार बार बार बार बार माइज मुकेश और करोड़ों को चुराने वाला करोड़ों का दिल चुराने वाला माइटी मुकेश और आशा जी आ रहा है एक बार ना सौ बार।

चुराने वाला माइल की बुकेर आशा जी का ये दिल लेकर नजराना का ये सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं कोई जलवा का ओर, और वो है पद्मांश श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। और इस गीत को बेटी और बेटा का सुनना चाहिए, मूवी का नाम है दोस्तों।

तो क्या क्या होती। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरे दिल रुबा ना गुस्सा, मेरे दिल रुबा मुझ पर खफा न हो। पद्माश श्री मोहम्मद रफी का ये पुराना सॉन्ग है दोस्तों, नुपर मोफी है दोस्तों। तो ये गीत आपको हम सुनाए जाते हैं, आओ सुना जाए।

मोहम्मद रफ़ी, परमा श्री मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ मुकेश माई थी मुकेश के भी गीत बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो एक माई थी मुकेश का भी हो जाए। ठोकर मौफी का नाम है, नेखती सेवन तक का ये हिट सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं ढूंढता हूं किसको, ये आपको तो पता होगा, और हम भी है तुम भी हो। मैती मुकेश गीता दत्त का ये सॉन्ग है मूवी मूवी मूवी, राज कपूर।

इस गीता दत्त लता जी का ये सॉन्ग है और इसमें काम किया है राज कपूर पद्मिनी के साथ हम चलते हैं एक मनोज कुमार और मल्हार सिन्हा का मूवी जिसमें मैथिली मुकेश भी अपना गीत को गाया है और वो है हरियाली और रात।

तेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। मूवी का नाम है हरियाली और रास्ता। सुनाएंगे महेंद्र कपूर का ये और एक सुपर हिट सॉन्ग है लाइफ लाइफ लाइफ ऑफ खनो वुमेन्स।

और एक लाइव सॉन्ग थे महेंद्र कपूर का सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, मूवी का नाम है हरियाली और रास्ता, जिसमें मनोज कुमार मल्हा सिन्हा ने काम किए हैं। करोड़ों का दिल चुराने वाला मैथिली बुके ए नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है।

फूल को भी तुझको, रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रियों से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल, नहीं नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1900 का, 1950 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड फॉर

और हट जाओ और दीवाने आए और कौन सा दीवाना आएंगे हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं और सुना जाए मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है।

और ऐसा ठुमक के मत चलो, ऐसा ठुमक के मत चलो कि आपको ठुमका लग जाए। तो ये गीत बहुत यानी कि मशहूर है दोस्तों, और ये है दिल तेरा दीवाना।

नजर बचा कर चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों। इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी का नाम है जाजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन। और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने, तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

करने को ये सॉन्ग दे और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नहीं खत का सोन और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड तो और कुछ है दोस्तों, और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जों और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है साजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है मैं दी मुकेश का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना, और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

और दिल भी हम आपको दिया है और आप भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांझ करते हैं तो हम चलते हैं मौफी के नाम है भरोसा निकट होंद द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपर हिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: Quartet.
1: Zo, die kan wel een cool best pro.
2: Yes, dosto. तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते है गुरु दद और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निखती द्री एंसेस्टर का, बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

0: इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौशाद के साथ में
1: टूटे ना दिल टूटे ना।
0: हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज।

फिक नाम थे हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जेते दूर कोई गाए धुनिए।

और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मने और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है।

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान नहीं।

और टीम टीम टीम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को 1955 का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और इसके बाद हम चलते हैं पद्मश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और डुएट सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत एंड सेशन सेस्टक का ये सॉन्ग है।

दिल के भंवरे करे पुकार, अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कही पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

है, और हमसे कहा कि जोनी जरूर चलाना, तो हम जरूर चलाएंगे, आओ मिलकर सुना जाए। ये कालम नहीं है दोस्तों, ये कुछ और है।

हम उड़ जाएंगे। मूवी का नाम है अनमोल घड़ी दोस्तों, और इस फिल्म में इस गीत को गाए हैं शमशान बेगम और सोरेबा अम्बाली वाली। तो ये सब नाम तो हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सुना है, लेकिन इस मूवी में काम किया है सुरेंद्र नूर जहां सुरैया, सहूर राजा अनवरी, मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं। फिल्म के नाम है जाल नेगेटिव हंड्रेड एंड ट्वेन फेफ्थ का ये सॉन्ग है दोस्तों, और इसकी ताव सुना जाए। दिस इज हेमंत दादा।

Jal. 1952 का ये सॉन्ग है और वो बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है। तो हम आपको उस दौर, उस यादों की ओर लेकर चलते हैं जिस मूवी के नाम है दीदार। 1951 का ये सॉन्ग है और अगर बचपन में आप किसी से मोहब्बत किया है तो आप इस गीत से उसको या उसकी याद कर सकते हैं।

भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत की जो संबंध है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारी आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेगी तो दुनिया बोलेगा कि सरक के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है